0: Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: होता है ना ऐसे कि ऐसे ऐसे गाने बन जाते हैं जो हमको जिंदगी की राह दिखा देते हैं. इनमें से एक था श्री 420. 5:06. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नमस्कार. नीतू का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार करें. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है और इस थर्सडे मॉर्निंग को शुरू करने के लिए एकदम तैयार एकदम सज है. सो माय अर्ली राइजर्स व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वेल ट्यून, आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं और सुबह के 7 बजे तक आपकी नीतू विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. आपके मैसेजेस व्हाट्सएप ऑन 5499-1294. आवाज़ थोड़ी सी अलग रही है ना, अलग सी है. अभी क्या करें, मौसम ही कुछ ऐसा है, कभी गर्मी कभी सर्दी और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि गर्मी दस्तक दे चुकी है. इन दिनों रात को आपको भी फील हो रहा है, लेकिन आपको एकदम गुड़ी गुड़ फील कराने के लिए वी डू हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. सो व्हाटएवर यू माइट बी, अभी आप उठे हो, जागे हैं अभी अभी, आप आराम से पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा आप जॉगिंग कीजिएगा, वॉकिंग कीजिएगा एंड कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पहले जब खत लिखा करते थे कितना मजा आता था ना, वेट करते थे हाँ हमारे लिए भी कोई पोस्ट कार्ड कोई खत आएगा। आजकल तो इतना सब कुछ आसान हो गया है। सो चलिए, आपने लिखा है लेकिन ऑन 5499294 आपके मैसेजेस व्हाट्सएप। सो नमस्कार प्रणाम आप सभी को, आपके लिए हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जय माता दी। और मेरे बेटे पायुष लुबा, आज आप 27 ईयर्स मना रहे हैं अपने जन्मदिन का, सो ढेर सारी शुभकामनाएं ब्लेसिंग्स। मामा रानी, दादी लक्ष्मी, पापा जी हैं संजय और बिग बी हंस, सभी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते जी, प्लीज़ डेडिकेट गाना टू सुशील जानकी और ब्लावाचो, उनका बर्थडे है आज। माँ शीला, वाइफ शीतल, रवि, विशा, सब परिवार की तरफ से आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द सीनियर सिटीजन्स ऑफ मेबर्ग, लिस्कालिए, पिट्सिबेले, विल्नवर्क, क्या बात है, हैप्पी डे आप कह रहे हैं। आनी चांद एंड आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं उन सब के नाम। नमस्कार मिस दीपक एंड वेदिता के लिए, हमारे लिए, पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच। एंड मूविंग ऑन टू योर व्हाट्सअप मैसेजेस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ प्रणाम, मस्ट मॉर्निंग आपके साथ, थैंक यू सो मच। रेडियो मस्ती आपके साथ, साच हॉस्पिटल से मिस्टर जयशांत तेम्बा, दानु, जीवन, अंगोठिया, आकाश, शर्वन, मेवीन, थैंक यू सो मच, आपको हम कहेंगे थैंक यू सो मच। और रोम साई राम, आपके लिए भाई सूरज शर्मा से ज़्यादा, सब परिवार के नाम। गुड मॉर्निंग अब्दुल एंड सारा बानू, हैव ए नाइस डे अहेड, कैसे हैं नीतू? और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शीला जी, फ्रॉम लेस्पेरेंस दे त्रिबुशे। हैप्पी बर्थडे टू माय फ्रेंड सारिका साम, और बेस्ट विशेज आपकी तरफ से रेशमा, आशा, प्रीति, मालिनी, और काम करते हैं गुडलैंड्स में, सो बों कुहाश। एंड मिस्टर टोनी, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, कहते हैं कि अ सैटिस्फाइड लाइफ इज बेटर दैन इज सक्सेसफुल लाइफ, बिकॉज आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स बट आवर सैटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय आवर ओन सोल, माइंड एंड हार्ट। बिल्कुल पते की बात आपने कही है। तो बस जो भी है आपके पास, छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं उनको सराहते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप हैं अंजनी।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: हमारी भी यही कोशिश हो रही है कि गानों के जरिए आपसे गले लग पाए. थैंक यू सो मच. 529 बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप और जाने वाले काम पर जा रहे हैं बच्चे लोग स्कूल एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं. बेस्ट ऑफ लक. बों कुराज. बस ब्रेकफास्ट मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पानी बोतल जो है मिस मत कीजिएगा. एंड म्यूजिक आइडल्स हमेशा आपके साथ हर सुबह हर शाम हर रात को. अभी के लिए 5499 1294 पढ़नी तो आपके साथ. गुड मॉर्निंग राजन, मोनिका, सरोज, उमेश, पूना, मुरवश, वाश, कैथ्रोबोन से गुड डे टू यू ऑल.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: कभी न भुलाने वाले एवरग्रीन सदाबहार गाने ओनली ऑन रेडियो मस्ती 5:38 साथ निभाते रहिएगा. हाँ, एक गीत के बाद आपका हॉरोस्कोप डेफिनेटली. अभी के लिए लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको सरोज. आप है त्यागोश से कहती हैं आज मेरे हबी का 50th बर्थडे है. बेस्ट विशेस आपकी तरफ से सरोज. बेटियां अनुष्का, आशी, दामाद है आवेश, आपकी मॉम और यहाँ पर मैसेज अधूरे हैं. सो थैंक यू सो मच साथ देने के लिए मिस्टर गुलाब जगा सिंह एंड परिवार. नमस्कार जी. सुप्रभात शुभ रात्रि. अभी टाइम है. गुड मॉर्निंग आपको सूरज पर सनूला कैथर कोको से है. वाइफ का बर्थडे है. ओके, तो उनको हैप्पी बर्थडे प्रीति. आपकी तरफ से बेटियां शिखा, शानवी और आपके सभी परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. लालमाची से साधना और मुकेश गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रही है. सो आप एंजॉय कीजिएगा. सुप्रभातम संगीता, ग्रैंड चिल्ड्रन श्रिया, आर्यन, नील एंड पूरे परिवार. कैसे आप आज फैमिली फ्रॉम वोशनमो. नमस्कार आपको और जितने भी लोग हमारे हम सफर बने हुए हैं. देश वन आपके नाम.

0: 5:46 हम भी नहीं भूले कि इट्स टाइम फॉर योर होरोस्कोप
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती
0: और शुरुआत तो आप ही के साथ हो सकती है
2: एरीज मेष राशि
0: आज का दिन आपके लिए प्रगति और नई उम्मीदों से भरा रहेगा वेल कृषकों और उनके कार्यों में सफलता मिलेगी खेती से जुड़े कामों में अच्छी गति आएगी यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज उसे आगे बढ़ाने का उत्साह मिलेगा
2: टॉरस वृषभ राशि
0: वेल आज आपके लिए खुशियों भरी खबरों का दिन है ऑफिस में प्रमोशन की सूचना मिल सकती है क्या बात है जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेंगे वैसे घर में भी प्रसन्नता का माहौल रहेगा किसी छोटी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने से बचे वरना मन अनावश्यक उलझनों में फंस सकता है
2: जेमिनी मिथुन राशि
0: आज आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और समझदारी से निभाएंगे परिवार के लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा वैसे प्रेम संबंधों में चल रही अनबन समाप्त होने की संभावना है और आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ भी पाएंगे आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और दिन उत्साह के साथ बीतेगा
2: कैंसर कर्क राशि
0: आज का दिन आपके लिए लाभ और सम्मान लेकर आएगा बस बड़े बुजुर्गों की सलाह को महत्व देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियां जो हैं उनकी मेहनत रंग लाने के संकेत हैं वैसे सामाजिक क्षेत्र में आपके सज्जन व्यवहार की प्रशंसा होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा
2: लियो सिंह राशि
0: Alright, आज आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा जागेगी और शुभ विचारों से मन उत्साहित रहेगा वैसे आपके लिए कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मनपसंद वस्तु खरीदने का अवसर आपको मिलेगा ऑफिस में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए आप पूरे मन से प्रयास करेंगे
2: वर्गो कन्या राशि
0: वेल दिन कुछ उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता रहेगा अनावश्यक विवादों से दूर बनाए रखें वरना छोटी बात को भी आप बड़ी उलझन का कारण बन सकती हैं दोस्तों का सपोर्ट आपको कई परेशानियों से बचाएगा कार्यक्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होगी और उनके अनुभवों से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है
2: लिब्रा तुला राशि
0: आज आपके जीवन में आर्थिक सुधार और पारिवारिक खुशियों का सुंदर मेल देखने को मिल सकता है प्राइवेट नौकरी करने वालों की सैलरी में इंक्रीमेंट होने की आर्थिक स्थिति से यानी कि मजबूत हो सकती है परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बन सकती है वैसे अपने जरूरी सामान को साथ रखना ना भूलें और इम्पोर्टेंट डिसीजंस में परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि
0: वेल आज आपका मनोबल ऊंचा रहेगा मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा व्यापार में चल रहे उतार चढ़ाव से सेहत राहत मिलेगी और बिक्री में बढ़ोतरी होने के भी संकेत है दोस्तों मित्रों के साथ छोटी सी पार्टी या मिलन समारोह का आनंद आप ले सकते हैं आपका स्वभाव उसमें सकारात्मक बदलाव आएगा और आप पहले से अधिक प्रसन्न महसूस भी करेंगे
2: सजिटेरियस धनुराशि
0: आज का दिन आपके लिए सम्मान समृद्धि और नई सीख लेकर आएगा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वालों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा सकता है परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और अपनों के साथ आपका लगाव और गहरा होगा आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
0: वेल आज आपका सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और नई योजनाओं को लेकर उत्साहित भी होंगे मनपसंद वाहन खरीदने की इच्छा प्रबल हो सकती है और बच्चों के किसी पसंदीदा क्षेत्र में चयन की खुशखबरी आपको मिलने के योग है हालांकि जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ भी सकता है इसलिए हर कार्य को ध्यान से पूरा करें
2: एक्वेरियस कुंभ राशि
0: आज का दिन आपके लिए

0: ये उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, कार्यभार में विस्तार होगा। बड़ों की बात ध्यान से सुनना और उनकी सलाह का सम्मान करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। प्रेमी के साथ शाम को शॉपिंग पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे दिन मनोरंजन और खुशियों से भर भी जाएगा।
1: Pisces, मीन राशि।
0: एंड फाइनली आज आप

0: आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद बनी रहेगी। स्टूडेंट्स की लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी और वे किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित भी हो सकते हैं। वैसे तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक और आगे बढ़ने वाला रहेगा। आगे बढ़ते चले, डू गुड बी गुड, स्टे सेफ एंड विशिंग यू ऑल ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी गुड डे अहेड।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:56 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार।
3: ओ मेरी

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 6 बजे है। संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार।
6: नमस्कार आदाब। राशन वाले चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लाया गया, लेकिन खेपों को मुर्शस तक पहुंचाने में देरी हो रही है। कल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर पड़ रहे हैं, फिर भी एसटीसी ने पुष्टि की कि स्थानीय मंडी में सप्लाई के लिए काफ़ी स्टॉक है। ईंधन की कीमतों में नई बढ़ोतरी लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास पर मुर्शस की नज़र है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन ने पुष्टि की कि दामों के ढांचे पर दोबारा गौर करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मोहिस प्यात की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। शागो समझौते के सिलसिले में मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे

0: पर ओलिविए बोंकुल्ट ने नई प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना पड़े तो वो करेंगे. शागुस रेफ्यूजीज ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की ज़रूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का नुकसान ना हो. विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सलामी से उनका स्वागत किया. चीनी राष्ट्रपति की ये 3 दिवसीय यात्रा है जिसके दौरान व्यापार समझौते को जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा जो इस साल के नवंबर महीने में ख़त्म होने वाला था. टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान के साथ जंग वगैरह पर भी बातचीत होगी. तो अभी के लिए बस इतना ही. मौसम का हाल. आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद उत्तर और सेंट्रल प्लेटू में बादल घिर आएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है. दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा. आज रात के दौरान आसमान साफ रहेगा और मौसम अच्छा रहेगा. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा. दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है, खासतौर पर दक्षिण वाली लगूनों में. तापमान, सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 23 से 26. साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा. आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा. तो ये थी अब तक की खबरें. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार, रादाब.
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musti.

0: नमस्कार 9 मिनट वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स आपके लिए राइज एंड शाइन एंड हमेशा ऐसे ही आप राइज करते रहे और जीवन के हर क्षेत्र में राइज करते रहे 5499 1294 पर काफी मैसेजेस हैं आपके
1: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: Sonam Bhola kehti hai, please next gana guzar to Mama Visha Ashwini. Teen bache hai, Prince, Garb, Mayansi aur aapke puri parivar ke liye. Good morning, Nidhu. Aaj meri choti behen Hema. सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है सुबिनीता आनंद अरुण श्रीधि मोहन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं एंड यही अगला गाना आपके लिए कुंगुमा से सोना सुचिता साहिल अंकुश एंड किंजर ऑलराइट 5499 1294 पर धनेश्वर जी बॉम्बू से हैं पत्नी सुनीता साथ में देव रेखा संजीव निशा दविद उस परिवार के लिए कैसे रीटू ठीक बिल्कुल ठीक ठाक हूँ दूतिका एंड रघुजना परिवार थैंक यू सो मच वैसे आपके लिए हैं आप है कौन मैं यहाँ पर देख रही हूँ देवी जी चलिए आपका स्वागत है थैंक यू सो मच रोटी और कपड़ा और मकान वाला गाना आपको अच्छा लगा अमृता थैंक यू माई डियर पोएट साबल से आपके नाम पूरे परिवार के लिए इक्वली गोज़ आउट टू यू टू माई डियर ललिता एंड जीत इन फैमिली तो बस जितने भी हमारे परिवार साथ दे रहे हैं अपने मन को खुश बनाते चले हंसते रहे मुस्कुराते रहे गाते गुनगुनाते रहे

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: आप जैसे लोग अगर सामने भी ना आए लेकिन आपके मैसेजेस तो आ जाते हैं, आपका प्यार आ जाता है. थैंक यू सो मच. आपके नाम नीता, रीता फ्रॉम अ लवली फ्रेंड स्वीटी एंड वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? विंती दोमा मेलगो से विश कर रही हैं हैप्पी बर्थडे टू नीस, सुधी, राम गुलाम, पुफा विश्वन, पापा विक्रम, माँ वानिशा, भाई वीर, राम गुलाम परिवार एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं.

इधर कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ हो रहा है आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू भगवत विदेशी एनी गाना आप कहती हैं आपके नाम आपके पूरे परिवार के लिए व्हाई नॉट विशिंग 15th बर्थडे टू यू प्रिंसेस रियासना देवी रामा मुका नीरज पामिला रविश प्रिशा लवशैन सभी डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: मस्ती तो जारी रहेगी भाई ऑन रेडियो मस्ती ऑफ कोर्स 6:28 बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन उसके बाद मॉर्निंग बीट

सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। क्या मॉरिशस का संविधान जबानी भेदभाव से सुरक्षित है? जवाब है ना। कल आम किए गए एक पोजीशन पेपर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये बात स्पष्ट किया और सरकार से इसे सुधारने की मांग की। राशन वाले चावल की सप्लाई के लिए स्टॉक है, फिर भी खेपों को मॉरिशस तक पहुंचाने में देरी हो रही है। मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर। शागो समझौते के सिलसिले में मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकूज ने दी नई प्रतिक्रिया। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की जरूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का भी नुकसान न हो। विदेश में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश

0: किया ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ सात महीनों की जंग के बाद आज भी ईरान झुकेगा नहीं। नमस्कार आदाब, एक बार फिर से। सबसे पहले ये खबर, क्या मॉरिशस का संविधान जबानी भेदभाव से सुरक्षित है? जवाब है ना। कल एक पोजीशन पेपर आम किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्पष्ट किया कि जबानी भेदभाव से मॉरिशस का संविधान सुरक्षित नहीं है और सरकार से इसे सुधारने की मांग की जा रही है। राशन वाले चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लाया गया, लेकिन खेपों को मॉरिशस तक पहुंचाने में देरी हो रही है। कल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर पड़ रहे हैं, फिर भी एसटीसी ने पुष्टि की कि स्थानीय मंडी में सप्लाई के लिए काफी स्टॉक है। आशी बाचू, विधिमा से बुरन।
1: एसटीसी ने स्पष्ट किया है कि उसकी आपूर्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसने याद दिलाया कि वो आमतौर पर हर तिमाही में लगभग 8,000 मेट्रिक टन राशन वाला चावल आयात करती है। हालांकि कुछ खेपों के आने में फिलहाल देरी हो रही है। संस्था के अनुसार इस स्थिति का मुख्य कारण कंटेनरों में जगह की कमी, ट्रांसशिपमेंट यानी माल की अदला बदली के दौरान अधिक समय लगना और कुछ समुद्री मार्गों का पुनर्गठन होना है। इन बाधाओं के बावजूद कॉरपोरेशन ने आश्वस्त किया है। उसका कहना है कि मंडी में आपूर्ति बनाए रखने के लिए उसके पास पर्याप्त स्टॉक है और देश भर में 2.5 किलो वाले राशन के चावल के लगभग 12,000 बोरी हर दिन बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रहे हैं। संभावित व्यवधानों को सीमित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उत्पाद उपलब्ध न होने की स्थिति की सूचना देने के लिए एक समर्पित टेलीफोन लाइन शुरू की गई है, जबकि विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में दुकानों तक आपूर्ति को मजबूत करने के लिए एक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यानी डायरेक्ट सेल्स यूनिट को तैनात किया गया है। एसटीसी का कहना है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और उसने आश्वासन दिया है कि वो राशन वाले चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण की गारंटी के लिए आवश्यक उपाय करना जारी रखेगी।
0: ईंधन की कीमतों में नई बढ़ोतरी लाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास पर मॉरिशस की नजर है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्योन ने पुष्टि की कि दामों के ढांचे पर दोबारा गौर करने का प्रावधान है। मंत्री माइकल सिक्योन को सुनते हैं, यासिन दिन मोहम्मद ने उनसे बात की।
2: The price stabilization account li empêche augmenter plus que 10%.
1: प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट का मेकानिज्म 10% से पार की वृद्धि और 10% से पार के कम को रोकता है। क्यों 60 रुपए पर अटके हैं? क्योंकि जब ये 36% से बढ़ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है, तो हम इसे 10% से ही बढ़ा रहे हैं, अर्थात 26% की कमी है। इसीलिए इसे कम नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग बिना विषय को समझे टिप्पणी करते हैं।
2: Et aussi souvent moi je trouve du monde mix up beaucoup du monde faire mal commentaire sans qu'ils aient compris le sujet.
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मॉरिस पियात की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई थी। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। लुवीना सूफी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सीनियर काउंसिल वकील सत्यजीत पुलेल से बात की, उन्हें सुनते हैं।
3: Sur baser le man certificat médical, c'est nous devoir d'assurer qu'ils sont dans un foyer au sein de notre famille.
1: मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ बुजुर्ग कैदियों को उनके परिवार के बीच अपने घर में आखिरी समय बिताने का मौका देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य है कि वे अपने आखिरी दिन अपने करीबियों के प्यार और देखभाल के साथ अधिक मानवीय परिस्थितियों में गुजार सकें। हालांकि हर मामले को अलग अलग देखा जाएगा और परिवार की सहमति भी जरूरी होगी। हम वृद्ध लोगों को राहत पहुँचाना चाहते हैं जिन्होंने काफी समय जेल में बिताया है। वे अपने करीबियों के साथ समय बिताना चाहते
3: हैं।

0: कैदी इस कदम से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और संबद्ध पक्ष आने वाले दिनों में फिर से एक बैठक में हिस्सा लेंगे ताकि कैदियों का पुनर्वास हो। शगुस समझौते के सिलसिले में मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बंकूज ने नई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना पड़े तो सही, शागुस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की ज़रूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का भी नुकसान ना हो। अद्रियन वालिया ने उनसे बात की, विवरण विधि मासीबुरन का है।
1: अगर इस डील में कुछ जोड़ा जा सकता है तो इस पर चर्चा करनी होगी, साथ मिलकर एक निर्णय लेना होगा जिसमें विन विन सिचुएशन हो।
0: डोनाल्ड ट्रंप की निंदाओं के बावजूद ओलिविए बंकूज को उम्मीद है। शागुस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष का मानना है कि मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की फ़ोन पर हुई बातचीत हिम्मत अफजाई करती है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के खंडन पर अफसोस जाहिर किया और हल की उम्मीद जताई ताकि शागुसियन लोगों के साथ हुई नाइंसाफी की इसलाह हो।
1: मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक कदम है जहां इस डील पर फिर से बातचीत शुरू हुई है। इससे पता चलता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मॉरिशस की सरकार और यूनाइटेड किंगडम के बीच तय समझौते का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। हमें लगता है कि अन्य समाधान ढूंढे जा सकते हैं। हम आशावादी हैं, आशा करते हैं कि जो अन्याय हुआ है उसे सुधारा जाए।
0: विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति की ये 3 दिवसीय यात्रा है जिसके दौरान व्यापार समझौते को जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा जो इस साल के नवंबर महीने में ख़त्म होने वाला था। टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान के साथ जंग वगैरह पर भी बातचीत होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियां ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ 7 महीनों की जंग के बाद आज भी ईरान नहीं झुकेगा और इस युद्ध के लिए वो एक कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। वे संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता पर जितना जुर्म उठाया जाएगा या दबाव डाला जाएगा उतना ही उनकी ताकत और यकीन बढ़ेगा। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी और दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ होगा और मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुंदर में ना जाने की दरखास्त है, खासतौर पर दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 23 से 26, साहल इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रहेगा और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबर एक बार फिर से पेश है। क्या मुर्शिद का संविधान जबानी भेदभाव से सुरक्षित है? जवाब है ना। कलाम किए गए एक पोजीशन पेपर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये स्पष्ट किया और सरकार से इसे सुधारने की मांग की। राशन वाले चावल की सप्लाई के लिए देश में स्टॉक है, लेकिन खेपों को मुर्शिद तक पहुंचाने में देरी हो रही है। मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर। शागो समझौते के सिलसिले में मुर्शिद और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकुर ने दी नई प्रतिक्रिया।

शागुस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की जरूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का भी नुकसान ना हो। और विदेश में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियां ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ 7 महीनों की जंग के बाद आज भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी यूसुफ सुभाजी की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नुवेल दे कुवैत में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड श्रीमती नालिनी पसन, श्रीमती नालिनी पसन पैदाइशी नाम ननू जो नालिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके पति आनंद पसन के घर रॉयल रोड नुवेल दे कुवैत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गिपाय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड सितियामिल थ्रियोले में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजमती गोपुर पैदाइशी नाम सिबारत जो राजमती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी बेटी संजीव विनोद गोपुर के घर रॉयल रोड सितियामिल थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS क्रिमेशन थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रानी कहारी पैदाइशी नाम गुडो जो माया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनके पति सिलाल कहारी के घर एस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड शामुनी में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रेमिला गोबर्धन पैदाइशी नाम श्रीपोल की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति सुरेश गोबर्धन के घर रॉयल रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2 PM। शांति नगर रोड बेलमो में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सावित्री प्रभू पैदाइशी नाम संतु जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति कृष्ण प्रभू के घर शांति नगर रोड बेलमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कात्र कोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री कैथरबोन में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुदबामा उला पैदाइशी नाम पूरन सिंह जो राधिका के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज साढ़े दस बजे इनके बेटे विनोद सुभाष उला के घर नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। एवेन्यू डे जारकोंडा कैथरबोन में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री राजेंद्रनाथ बुवानीदीन जो प्रवीण के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज ढाई बजे इनके घर कैथरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। गुडलैंड्स में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री जीवनलाल सीतोहल जो चीतों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी माँ चंदू सितोहल के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 11 AM। बागन लेन बेलेरिविया सश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड

श्री धनमराज उजायब, श्री धनमराज उजायब जो शाउस संजय दत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी बाद में उठाई जाएगी। एवेन्यू मोटे लाबूत में 78 साल की 78 years old श्रीमती विल्दिया गोरीबा, श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदायशी नाम चेदी जो जेल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 11 बजे, आज 11 बजे इनके घर एवेन्यू मोटे लाबूत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैन जोर्ज ले सालिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कॉम्बुम्बाई नंबर 2 वाकवा में 74 साल की 74 years old श्रीमती सत्यवती गोपाल, श्रीमती सत्यवती गोपाल पैदायशी नाम सोनू जो सकुन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, अर्थी आज 12:30 बजे, आज 12:30 बजे इनके घर कॉम्बुम्बाई नंबर 2 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मिल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

तो बहुत अच्छी बात है भाई कि दिल किसी के नाम पे धड़कता है, इसको धड़काने दीजिए. 6:54 टाइम टू से बाय बाय बस सचाते जाते. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको स्वीट पारुषी पारिधि प्रेतमी प्रिया निशिका नितिन विशाल यानेश एंड टू आर एम टू थैंक यू सो मच. नमस्ते जी, आज मेरे जीजाजी सोमदत्त का बर्थडे है. बेस्ट विशेज बेटा की तरफ से अभी आयुष वाले दिपकत से हैं जयश्री और सभी परिवार के नाम. बेस्ट विशेज टू यू टू अकियाना दकी एंड ऑफ कोर्स ये आपके लिए है, 6 साल की हो गई है, रहती है यहाँ ब्रितानिया. सो ब्लेसिंग्स टू यू मामा अनुष्का, पापा मिथुन, चाची है वर्षा, चाचा प्रीतम, पापा रणधीर एंड बुबू सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार. हैप्पी बर्थडे टू यू टू यहाँ पर जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. सो मिलते हैं बहुत जल्द. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.

0: और 60 भी बज चुके हैं.
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2. Radio.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 7:06, कैसे हैं आप लोग। मैं विदिता आप सबों का स्वागत करती हूं आप ही के प्रोग्राम में। भाई ये है आपका मॉर्निंग बीट, और यहां पे हर एक बीट यही कहता है कि अपनी जो बॉडी में एनर्जी है ना, उसको जगाने का टाइम आ गया है। सो वेलकम, स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और रेडियो बस्ती पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड उम्मीद करती हूं कि मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी रही होगी। अगर कोई भी टेंशन है तो दूर भगाने के लिए हम हैं ना रहेंगे 9 बजे तक। कीप लिसनिंग।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो जी, रेडियो मस्ती पर स्वागत है आप सबों का, जहां से भी साथ दे रहे हैं आप हमारे। प्लीज लेट मी नो 1549 1294। एंड जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी का बर्थडे होता है हम उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, तो अगर आप भी किसी को बर्थडे पे सरप्राइज करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट कि हमारे पास एक वाउचर भी है जो हम उनको देने वाले हैं। तो अभी से आप प्लीज उनका नाम और उनका फोन नंबर हम तक भेजिए। नंबर है 5491294। और बाकी जो लोग इस समय अभी रश कर रहे हैं, रोड में रश करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकले, आराम से अपनी तक पहुंचे। और ये जो टेंशन लेकर आप चलती हो ना, इससे कुछ नहीं होता है, बस आपके चेहरे की जो ब्यूटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंसान तभी अच्छा लगता है जब वो स्माइल करता है।
3: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती।

चलो जी, तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को हम अभी कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जो सही वक्त पे फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उनको मिस कर जाते हैं। एनीवे, चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ फिर फ़ोन कोई उठाता है तो हम उनको हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करते हैं। एंड बाय द वे, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग कि किसी न किसी को हम खुश कर सकें, क्योंकि उनकी तरफ से मिलता है यहाँ पर उनको एक वाउचर। जी हाँ, उनको मिलता है एक वाउचर जो कि आप आज आके कलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर कल आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड बाकी जो हमारी दोस्त है, अगर आप ऐसे ही किसी को खुश करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें भेजें उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर। वैसे जैसे मैंने कहा कि आज तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स आए हैं जिनमें से हमने कई सारे नंबर्स को कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो चलिए ऐसा करते हैं, एक छोटा सा गाना सुन

भी लेते हैं, अगर कोई लकी होगा तो जरूर अभी फोन तो उठा ही लेगा। रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन। सुनते रहो।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है. लाइफ में ही सोच कर चलो तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती है. 7:31 हुए हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. और यहाँ पर समय हो गया है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का. कौन है हमारा बर्थडे बॉय या कौन है हमारी बर्थडे गर्ल? वैसे यहाँ पर हमारे साथ हैं, हेलो गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: यस गुड मॉर्निंग जी. पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए.
3: मेरा नाम पांडू है, श्री किशन पांडू.
2: अच्छा जी, श्री किशन जी कैसे हैं आप?
3: अच्छे हूँ मैं.
2: ओके, तो अभी हम जब फोन लगा रहे हैं तो हम तो बात करना चाहते हैं आपकी मम्मी के साथ, क्योंकि आज आपकी मम्मी का बर्थडे है एंड शी इज 90 years old, राइट?
3: 90 years old, yes.
2: और राइट, तो यहाँ पर क्या है ना कि मैं जानती हूँ कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है. आपने बताया कि वो फोन अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ, वो रेडियो सुन रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी का नाम क्या है?
3: लक्ष्मी पांडू.
2: लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी को हम अपनी पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से कहना चाहेंगे

0: रेडियो मस्ती।
1: ऑलराइट, सो आपके मम्मी को मिल रहा है यहाँ रेडियो मस्ती के साथ खेलने पर नहीं बल्कि रेडियो मस्ती के साथ यहाँ पर उनको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको मिल रहा है एक वाउचर जो आपको आज नहीं तो कल आकर कलेक्ट करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से सफर के 3 बजे के बीच में आपको यू हैव टू ब्रिंग योर आईडी कार्ड। सो मैं बस विश करती हूँ कि आपकी मम्मी जो हैं वो स्वस्थ रहे एंड खुश रहे एंड प्लीज़ ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल टुडे, क्योंकि 90 ईयर्स पता नहीं, हम तो कल का हमारा भरोसा नहीं है, लेकिन 90 is a very beautiful age होता है। सो मम्मी को कहेंगे कि वो स्वस्थ रहे एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात की, वरना मुझे नहीं पता कि मम्मी फोन पे बात कर सकते। तो मम्मी के लिए कोई मैसेज है आपके पास? यू वांट टू से समथिंग?
2: चाहिए तो दो बातें वो कर सकते हैं।
1: हाँ जी बताइए, मम्मी को क्या कहना चाहोगे आप?
2: यही कहूँगा वो सुखी रहे, हरदम हमारे साथ रहे। वो जो बातें करना चाहते हैं तुम्हारे साथ, ओके?
1: मम्मी बात कर पाएगी?
2: हाँ मम्मी बात करेगा।
1: अच्छा करेगा तो ठीक है, चलिए मम्मी से बात करते हैं, देखते हैं। हेलो, नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते।
3: नमस्ते,
1: आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बस खुश रहिएगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, और आपको लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर मिल रहा है जो मैंने आपके बेटे को बोल दिया है कि वो आकर कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आकर एट दी MBC। तो आपको शुभ दिन और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
3: जी हाँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन, नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: चलो तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे प्रोग्राम के साथ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके एंड बाकी आपको पता ही है अभी गीतों का सफर जारी है आपके अपने रेडियो मस्ती पर इन योर मॉर्निंग बीट।

0: में लीग ए में इसमें चार ग्रुप हैं। लीग ए ग्रुप वन में है फ्रांस, इटली, बेल्जियम और तुर्की। लीग ए ग्रुप टू में जर्मनी, नेदरलैंड्स, सर्बिया और ग्रीस। लीग ए ग्रुप थ्री में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, क्रोएशिया, इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक। लीग ए ग्रुप फोर में पोर्टुगल, डेनमार्क, नॉर्वे और वेल्स। फिर लीग बी, सी और डी भी हैं। आज लीग ए मतलब एलीट ग्रुप के में नेदरलैंड्स का मुकाबला जर्मनी से, सर्बिया वर्सेस ग्रीस। लीग ए के ग्रुप फोर में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी। द नेशनल मैनशाफ्ट के लिए बॉस यर्गन क्लॉप के लिए बैटेम दे फ्यू। लिवरपूल से जाने के बाद ये क्लॉप के लिए वापसी कॉम्बैक है, पहली बार वो मैदान में उतरेगा। उसके लिए नया चैलेंज, नई चुनौती है द नेशनल मैनशाफ्ट में अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाना, ब्रिंग बैक लॉस्ट ग्लोरी। नए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, दो अलग अलग स्क्वाड हैं, जवान टीम है, एवरेज एज 24 से 25 के बीच। नेदरलैंड्स के खिलाफ यर्गन क्लॉप के सामने कुछ पुराने खिलाड़ी होंगे जिनको वो अच्छी तरह से जानता है। लिवरपूल का उसका कप्तान वर्जिल वान डाइक, कोडी गाक्पो, ग्रेवेनबर्च आदि। नेदरलैंड्स का नया बॉस ज़ावी हर्नांडेज़ है, जर्मनी की तरह यहां पर भी नया बॉस। ग्रुप फोर में पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, चर्चा का विषय है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 41 साल का, 41 ईयर ओल्ड, पर अभी तक दम है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पोर्टुगल दो नेशंस लीग जीत चुका है, नेशनल टीम के साथ 1000 गोल का टारगेट है, अभी 21 गोल और चाहिए CR7 को। आज के अन्य लीग में अंडोरा, माल्टा, लिएश्टेनस्टाइन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, इसराइल, कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। कुछ फ्रेंडली मैच भी आज खेले जाएंगे, इनमें जापान का मुकाबला यूरुग्वे से, साउथ कोरिया, इक्वाडोर, चीन, मालदीव्स, उज्बेकिस्तान, इराक। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स के तहत आज ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट, गाना के बीच गर्म मुकाबला। ग्रुप ई में कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाटोरियल गिनिया, सियेरा लियोन का मुकाबला जिम्बाब्वे से है। ग्रुप एफ में मोरिटानिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ग्रुप जी में नामीबिया, कोंगो, कमरून का मुकाबला कोमोरो आइलैंड से। फिर ग्रुप एच में लीबिया, बोत्सवाना, ट्यूनिजिया वर्सेस युगांडा। कल UEFA Women's Champions League के लीग स्टेज के मैच खेले गए, बार्सिलोना ने 5-2 से पारी FC को हराया। चेल्सी की जीत 1-0 से ऑस्ट्रिया वेन के खिलाफ। OH Leuven 0, AS Roma 0 और ओलंपिक लियोन 8, सर्वेट 0। दो फ्रेंडली मैच भी खेले गए, अजरबैजान ने 1-0 से ताजिकिस्तान को हराया। जिब्राल्टर और साउथोमे के बीच मैच ड्रॉ 0-0। टोक्यो में लग रहे एशियन गेम्स में जहां चीन की टीम मेडल टैली में बहुत आगे है, टीम इंडिया के खाते में अब तक 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल महिला क्रिकेट टीम के नाम। जुजुत्सु में हमारे एथलीटों के बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी हैं। अल्जीरिया में लग रहे अफ्रीकन जुजुत्सु चैंपियनशिप में 4 अलग अलग डिसिप्लिन में युवीना अजारी सिंह 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। एमी वाटरसन 2 गोल्ड मेडल जीत पाई। आदिल डुकी फुल कॉन्टैक्ट में चैंपियन बना। येहान पगाउन के नाम 2 ब्रॉन्ज मेडल। और घुड़दौर में गजाधर स्टेबल ने गायन कुरातुलो को अपना नया घुड़सवार, नया जॉकी बनाया है। डैनियलसन को निकाले जाने के बाद कुरातुलो को रखा गया है। That's it, the latest from the sports world. चलते चलते आपको याद दिला दें कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, यानी 3 हफ्तों के लिए प्रीमियर लीग और यूरोप के बाकी लीग के मैच नहीं खेले जाएंगे, नेशंस लीग के मैच रखे गए हैं। नेशंस लीग माने राष्ट्रीय टीमें मैदान में उतरेंगी। इंग्लैंड, आपको बता दें, आपको याद दिला दें, इंग्लैंड इस सैटरडे को मैदान में उतरेगा, वेम्बली में मुकाबला है वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से, इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: आवाजा समाचार सुना जा। राशन होला चावल के सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लावल कर रहल बाते, लेकिन खेप के मोरिस तक पहुँचे में देरी बाते। काल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक विज्ञप्ति जारी करलन और कहलन कि मध्यपूर्व के जंग के कारण समुद्री परिवहन पर असर परे रहन जा। फिर भी एसटीसी पुष्टि करलन कि स्थानीय मंडी में सप्लाई खातिर काफ़ी स्टॉक बाते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदी लोग के हालत पर फिक्र करत बाते। आयोग अपन न्यूज़लेटर में एक और उल्लेख करल बाते। पिछले महीना कॉर्डिनल मोहिस प्यात के मांग पर एगो पहला बैठक लगावल गल बाते। सब संबद्ध पक्ष एकत्र होल, सब मंजूरी जतैले बा कि कदम उठावे चाहेला और ए दिशा में एगो खास प्रोटोकॉल के अमल में लाना चाहिए। शागो समझौता के सिलसिले में मोरिस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नवा दावे पर ओलिविए बोंकुर्त नवा प्रतिक्रिया देबा। उ बतैलन जा कि अगर समझौता में कोनो चीज़ के जोड़ना बा तो उ करेगा। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एगो ऐसा नहल तलाशे के ज़रूरत बाते जिससे सब पक्ष सहमत बाते और किसी के नुकसान नहीं पाते। विदेश में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां बतैलन जा कि अमेरिका और इसराइल के संगे 7 महीना के जंग के बाद आज भी ईरान नहीं झुकेगा बाते झुकलन बाते और ई युद्ध खातिर उ एगो कूटनीतिक समाधान खातिर तैयार बाते। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हवाई अड्डा पर ओकर स्वागत करल बाते। चीनी राष्ट्रपति के ई 3 दिवसीय यात्रा बाते जेकर दौरान व्यापार समझौते के जनवरी 2027 ले बढ़ाए जाए जो इस साल के ई बरिस के नवंबर महीना में खत्म होने होल बाते। तो ई रहल समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.
1: RM2.
3: Traffic update.

सुबह के 8:03 हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शिकायतें आई हैं कि भाई ट्रियानों से लेकर रेजवी के और जो आ रहे हैं और जो पोर्टविस की ओर जा रहे हैं यहाँ पर भारी ट्रैफिक है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर ट्रैफिक ब्रांच से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक लोड़ी के ख़राब हो जाने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप लोग जब ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस लेना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एक लोड़ी की ख़राब हो जाने की वजह से अभी जो लोग ट्रियानों से निकल रहे हैं रेजवी की ओर आ रहे हैं या रेजवी से जा रहे हैं पोर्टविस की ओर, एक ख़राब लोड़ी की वजह से ये परेशानियाँ हो रही हैं। कोई भी अपडेट्स अगर आप हमारे शेयर करना चाहते हैं नंबर वही है 8549912294।

0: सुबह के 8:08 हुए हैं, अभी आप कृष्ण को सुन रहे हैं और चमेली बेटी पता है ना क्या करना है अभी आपको, लेकिन हमें क्या करना है ये तो भी हमें जानना चाहिए। सुमेरा के साथ आज मौसम कैसा रहेगा, चलिए ये जान लेते हैं।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद उत्तर और सेंट्रल प्लेटू में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश हो सकती है। दूसरे इलाकों में मौसम साजगार रहेगा। आज रात के दौरान आसमान साफ रहेगा और मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है, खासतौर पर दक्षिण वाली लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 23 से 26, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहेगा। आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Avis à tous les amoureux des animaux. 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. 1.2 kg de Whiskas Gourmet Seafood à 349,95 € et les 100 g de Manger pour chat et chaton Alpha Pet à 34,95 €. Profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille.
5: On est tous
1: Sweeters. Morning Beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.
0: A very good morning. सुबह के 8:10 हुए हैं। You are listening to Morning Beat विदिता के साथ on Radio Musti. I just hope कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मूड तो ठीक है आपका। बस मूड ठीक है तो भाई सब ठीक है। बाकी तो हमारा काम है ना, मूड को कैसे फिक्स करना है अगर खराब भी होता है तो। एक प्यारा सा गाना जो सीधे आपके दिल तक पहुंचे।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: और अभी आपके लिए लेकर आए हैं हम क्या, वैसे गाने तो हैं कमाल के, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी दो टिकट्स। जी हाँ, आपके मॉर्निंग और भी ब्यूटीफुल बनाएंगे भैया। आपको मिलेगा टिकट टू असिस्ट द फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 26 सितंबर, जो होने वाला है ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल में आज 6 PM। तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अगर आपको चाहिए एक ऐसा कॉन्सर्ट जहाँ पे भोजपुरी गाने हो, डांस हो, एंटरटेनमेंट हो, तो जलसा की रात आपके लिए है फर्स्ट एवर भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दो टिकट्स हैं आप जीत सकते हैं अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। तो आप मुझे ये बताइए, हमने आपको हम मंडे से बोलते आ रहे हैं कि इसमें बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल सिंगर्स हमारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, डीजेस भी होने वाले हैं। आप मुझे किसी भी दो सिंगर का नाम बता दीजिए। जी हाँ, या तो फिर डीजे का या सिंगर का नाम बता दीजिए, कोई भी दो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो फिर जो हमारे सिंगर्स हैं या तो फिर हमारे डीजेस हैं, आपका दो का आप नाम मुझे बताइए और जीत जाइए दो एंट्री टिकट्स। जी हाँ, इस कॉन्सर्ट के लिए जो कि है जलसा की रात, हमारा पहला भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल। आपके जवाब का मैं इंतजार करें 1549 और 1294। याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ भेजिएगा जवाब।

ऑलराइट बाप रे बाप, इतनी सारी जवाब। चलो भाई, टाइम लगा सबका नाम लिखने में और लकी ड्रॉ करना पड़ता है ना, तो पता होना चाहिए कि कोई छूट ना जाए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जवाब दिया। तो मेरा सवाल था, आप मुझे ये बताइए, जलसा की रात जो फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट होने वाला है 26 सितंबर को आज टिब्लिस बैंकवेट हॉल ऑस्टिनल, आपको मुझे बताना है कि इसमें दो सिंगर या कोई भी डीजे का नाम आपको मुझे बताना था। और यहाँ पर सब ने जवाब दिया, किसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, मैं बता देती हूँ यहाँ पे लाइव जो परफॉर्मेंसेज होने वाले हैं, रंबा राम तोहर, नीरज गुप्ता मधु, किशोर खेमिया, कुणाल हीरीलाल, रोशन सदा सिंह और कृषि मनिक साथ दे रहे हैं। तो यहीं पे डीजेज होंगे, जैसे डीजे नील के, स्पाइक की वी, डीजे वकील, डीजे अभी और डीजे एनी।

0: और इतने सारे लोग होंगे, शाम के 6 बजे ये जो कॉन्सर्ट है शुरू होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि जीतने वाली को मिल रहा है 2 टिकट्स, और जीतने वाली है कौन, जीतने वाली है एक्चुअली मनशिखा सलीक फ्रॉम पीतो। कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहे हैं 2 टिकट्स जलसा की रात कॉन्सर्ट के लिए। तो आप जाकर वहां पर भोजपुरी जो गाने हैं सुन सकते हैं, पूरी रात मस्ती होगी, डांस होगा, एंटरटेनमेंट है। तो 26 सितंबर शाम 6 बजे भूलिएगा नहीं, जलसा की रात एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल। आपको अपना टिकट जो है आना पड़ेगा लेने एट MBC सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच अपने ID कार्ड के साथ। एंड साथ में आपको बताऊं, ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 5792626262 पर।
1: मॉर्निंग बीट चेंज RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

deliver the message, eh?

0: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत और स्वागत करने के लिए हम हैं ना. चलिए एक बार फिर हमारे दोस्त अरविंद का स्वागत करते हैं और जिन्होंने हमारा जो स्पोर्ट्स है मिस कर दिया, जानते हैं कि स्पोर्ट्स अपडेट में वो क्या खबर लेकर आए थे हमारे लिए.
1: स्पोर्ट्स न्यूज रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन अरविंद.
2: Good morning, Aapko. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. PFA Nations League में आज सभी खिलाड़ी अपने वतन, अपने अपनी राष्ट्रीय टीम की सेवा में. इस टूर्नामेंट में अलग अलग लीग होते हैं. यूरोप की बेहतरीन टीम है लीग ए में. इसमें चार ग्रुप हैं. लीग ए ग्रुप वन में है फ्रांस, इटली, बेल्जियम और तुर्की. लीग ए ग्रुप टू में जर्मनी, नेदरलैंड्स, सर्बिया और ग्रीस. लीग ए ग्रुप थ्री में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, क्रोएशिया, इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक. लीग ए ग्रुप फोर में पोर्टुगल, डेनमार्क, नॉर्वे और वेल्स. फिर लीग बी, सी और डी भी है. आज लीग ए मतलब एलीट ग्रुप के में नेदरलैंड्स का मुकाबला जर्मनी से, सर्बिया वर्सेस ग्रीस. लीग ए के ग्रुप फोर में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी. द नेशनल मैनशाफ्ट के लिए बॉस यर्गन क्लॉप के लिए बैटेम डे फ्यू. लिवरपूल से जाने के बाद ये क्लॉप के लिए वापसी कॉम्बैक है. पहली बार वो मैदान में उतरेगा, उसके लिए नया चैलेंज, नई चुनौती है द नेशनल मैनशाफ्ट में अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाना, ब्रिंग बैक लॉस्ट ग्लोरी. नए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं. दो अलग अलग स्क्वाड हैं, जवान टीम है, एवरेज एज 24 से 25 के बीच. नेदरलैंड्स के खिलाफ यर्गन क्लॉप के सामने कुछ पुराने खिलाड़ी होंगे जिनको वो अच्छी तरह से जानता है. लिवरपूल का उसका कप्तान वर्जिल वान डाइक, कोडी गाकपो, ग्रेवेनबर्च आदि. नेदरलैंड्स का नया बॉस ज़ावी हर्नांडेज है. जर्मनी की तरह यहां पर भी नया बॉस. ग्रुप फोर में पोर्टुगल वर्सेस वेल्स. चर्चा का विषय है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. 41 साल का, 41 ईयर ओल्ड, पर अभी तक दम है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. पोर्टुगल दो नेशंस लीग जीत चुका है. नेशनल टीम के साथ 1000 गोल का टारगेट है. अभी 21 गोल और चाहिए CR7 को. आज के अन्य लीग में अंडोरा, माल्टा, लिएश्टेनस्टाइन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, इजराइल, कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. कुछ फ्रेंडली मैच भी आज खेले जाएंगे. इनमें जापान का मुकाबला यूरुग्वे से, साउथ कोरिया, इक्वाडोर, चीन, मालदीव्स, उज्बेकिस्तान, इराक. अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स के तहत आज ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट, गाना के बीच गर्म मुकाबला. ग्रुप ई में कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाटोरियल गिनिया, सियरालियोन का मुकाबला जिम्बाब्वे से है. ग्रुप एफ में मोरिटानिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. ग्रुप जी में नामीबिया, कोंगो, कमरून का मुकाबला कोमोरो आइलैंड से. फिर ग्रुप एच में लीबिया, बोत्सवाना, ट्यूनिजिया वर्सेस युगांडा. कल UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच खेले गए. बार्सिलोना ने 5-2 से पारी FC को हराया. चेल्सी की जीत 1-0 से ऑस्ट्रिया वेन के खिलाफ. OH लुवेन 0, AS रोमा 0 और ओलंपिक लियोन 8, सर्वेट 0. दो फ्रेंडली मैच भी खेले गए. आजरबैजान ने 1-0 से ताजिकिस्तान को हराया.

जिब्राल्टर और साओ टोमे के बीच मैच ड्रॉ 0-0। टोक्यो में लग रहे एशियन गेम्स में जहां चीन की टीम मेडल टैली में बहुत आगे है, टीम इंडिया के खाते में अब तक 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल महिला क्रिकेट टीम के नाम। जुजुत्सु में हमारे एथलीटों के बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी हैं। अल्जीरिया में लग रहे अफ्रीकन जुजुत्सु चैंपियनशिप में 4 अलग अलग डिसिप्लिन में युवीना अजारी सिंह 4 गोल्ड मेडल जीत पाई, एमी वाटरसन 2 गोल्ड मेडल जीत पाई, आदिल डुकी फुल कॉन्टैक्ट में चैंपियन बना, येहान पगाउन के नाम 2 ब्रॉन्ज मेडल। और घुड़दौड़ में गजाधर स्टेबल ने रायान कुरातुलो को अपना नया घुड़सवार, नया चौकी बनाया है। डैनियलसन को निकाले जाने के बाद कुरातुलो को रखा गया है। That's it, the latest from the sports world. चलते चलते आपको याद दिला दें कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक है, यानी 3 हफ्तों के लिए प्रीमियर लीग और यूरोप के बाकी लीग के मैच नहीं खेले जाएंगे, नेशंस लीग के मैच रखे गए हैं। नेशंस लीग माने राष्ट्रीय टीमें मैदान में उतरेंगी। इंग्लैंड, आपको बता दें, आपको याद दिला दें, इंग्लैंड इस सैटरडे को मैदान में उतरेगा, वेम्बली में मुकाबला है वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से, इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय। रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ लोग कॉन्फिडेंस की वजह से ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं. कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा. कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डाउट के बावजूद तुम खुद पर भरोसा रखोगे. कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता जब सब कुछ परफेक्ट हो. रियल कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब तुम मिस्टेक्स, क्रिटिसिज्म और अनसर्टेनिटी को बीच भी खुद को बिलीव करना सीखते हो. अपनी स्ट्रेंथ को याद रखो, मिस्टेक्स को फेलियर नहीं लर्निंग समझो. दूसरों से कंपैरिजन कम, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस ज़्यादा करो. हर दिन एक छोटा स्टेप लो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाता है, वही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. तो बस आज का मंत्र यही है कि मुझे परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस खुद पर ट्रस्ट करना है. तो इसके साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी. कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहो, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहो.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: Hey guys, thank you for tuning into Radio Masti. Virita ka saath hain. Good morning. How are you? Kaise ho? Bahut sare messages aaye hain. Sabko good morning. Thank you for loving the songs. Thank you for dancing to my beautiful songs. Yahan par kehte hain ki tunes aise hain ki hum log bas masti hi kar rahe hain. So thank you for that. And of course, aap log apne messages bhej sakte hain on 549 and 1294. Yahan par Abhishek ka birthday hai. Unko bhi hum happy birthday bolte hain. Kiana ko a very happy birthday, jo aaj apna birthday celebrate kar rahi hain. A very good morning to you, Kamaldeep. साथ देने के लिए कहते हैं टेंशन नहीं है, गाने ऐसे हैं कि हम मस्त मूड में. क्या बात है. एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मनीता बुझावन, ये है मोहताबाद से, और उनको विशेष भेज रहे हैं सुनीता पेम जो कि रहते हैं थ्वाबा. ओके, सो हैप्पी बर्थडे जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें. अगर अभी भी मस्ती के मूड में हैं तो मस्ती जारी रखते हैं.
0: मॉर्निंग बीट
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

हमारे जाने का. थैंक यू सो मच, लव यू गाइस. बस गीतों का सफर आपको पता है जारी रहेगा आपके अपनी मॉर्निंग बीट में. और अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, हमारे बाद बस खूबसूरत गीतों का सफर जारी रहेगा आपके अपने मस्ती मॉर्निंग में.

नमस्कार अनुराधा जी, सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। राशन वाले चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लाया गया है, लेकिन खेपों को मुर्शद तक पहुंचाने में देरी हो रही है। कल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असरात पड़े हैं। फिर भी एसटीसी ने पुष्टि की कि स्थानीय मंडी में सप्लाई के लिए काफ़ी स्टॉक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मोहिस प्याक की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सब ने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि करीब 15 कैदी इस कदम से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और संबद्ध पक्ष आने वाले दिनों में फिर से एक बैठक में हिस्सा लेंगे ताकि कैदियों का पुनर्वास हो। शागो समझौते के सिलसिले में मुशर्रफ और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकूर्ट ने नई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना पड़े तो वे करेंगे। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की जरूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का नुकसान न हो। डोनाल्ड ट्रंप की निंदाओं के बावजूद ओलिविए बोंकूर्ट को उम्मीद है। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष का मानना है कि मुशर्रफ और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत हिम्मत अफजाई करती है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के खंडन पर अफसोस जाहिर किया और हल की उम्मीद जताई ताकि शागोसियन लोगों के साथ की गई नाइंसाफी की इसलाह हो। और विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति की ये 3 दिवसीय यात्रा है जिसके दौरान व्यापार समझौते को जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा जो इस साल के नवंबर महीने में खत्म होने वाला था। टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईरान के साथ जंग वगैरह पर भी बातचीत होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ऐसा दिन की शुरुआत होती है और एक बार फिर से शुरू हो जाती है। हर किसी की अपनी अपनी कहानी। किसी को भागा दौड़ी पसंद है, कोई कहता है कि नहीं बहुत हो गया भाई, ऐसा है कि मंडे से लेकर आज थर्सडे हो गया, ये हफ्ता तो काफ़ी लंबा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, उतने ही वार हैं, यानी कि सोमवार से लेकर चलना रविवार तक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज मौसम अच्छा है। ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज मॉर्निंग में, लॉरी ख़राब थी और उसके चलते काफ़ी लोग थोड़ा सा लेट हो गए। नहीं, जो प्लान करते हैं उसके चलते प्लान ना हो पाए चीज़ें, तो लगता है कि ये क्या हुआ। हे हे साहब, इस सिचुएशन में भी गाना आ गया, करें तो क्या करें भाई। आर एम टू के अंदर ऐसे ही म्यूजिक के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं, जहां पर आपको कुछ गुनगुनाने का मौका मिल जाए, अपने मूड को बनाने का मौका मिल जाए। और भाई हम तो यहां पर जाए बी टाउन की बातें हो या फिर होम डेको, लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बातें हो, मोटिवेशन जिंदगी से जुड़ी, तो सब कुछ है यहां। मैं तो कहता हूं ये तो है प्यार का जहां। प्यार इश्क क्या था वो? प्यार।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: नहीं साहब नहीं, ऐसा नहीं कि आज इतनी हवा चल रही है कि चुनरी उड़ जाए। हाँ, लेकिन ये भी सच बात है कि हवा चलनी चाहिए म्यूजिक की हमेशा की तरह। चलिए शुरुआत करते हैं। वेल
2: एरीज मेष राशि।
1: एरीज रेडी हो आज के फुल स्पीड और एक्शन के लिए, तो बस थिंक शार्प। आज इम्पल्सिवली आपको जंप करने के बजाय थोड़ा सा पॉज लेना फायदेमंद रहेगा। किसी क्लोज पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है। रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन मिल सकती है। काम में पेंडिंग चीजें फिनिश करने पर फोकस रखिए। हर बैटल आज लड़नी जरूरी नहीं। आज का मंत्र, पहले सोचिए और उसके बाद एक्शन।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: टॉरस आज प्रैक्टिकल माइंड और इमोशनल हार्ट दोनों एक टीम बनकर चल रहे हैं। दोस्तों, कलीग्स या फिर किसी ग्रुप कनेक्शन से कोई यूजफुल आइडिया मिल सकता है। पैसा या फिर शेयर एक्सपेंसेस को मैटर में मत बदलो। अरे साहब, अजम्पशन नहीं, कैलकुलेशन कर लो। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनती, सुकून में भी सक्सेस मिल जाती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज वर्ड्स आर योर सुपर पावर। हाँ, लेकिन इससे पहले कि आप बोलें, थोड़ा तोले मोले फिर बोलें। एक मैसेज, ईमेल या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को सेंड करने से पहले डबल चेक करना जरूरी। भाई, करियर में प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन से इंप्रेशन बन सकता है। लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, हिंट्स नहीं, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहिए। मेरी बात में क्लैरिटी, मेरे डिसीजन में विजडम।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: भाई, ऐसा कि आज कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव और इंट्यूटिव फील कर सकते हैं। घर परिवार से जुड़ी कोई बात आपका टेंशन मांग सकती है और किसी इमोशनल कॉन्वर्सेशन से क्लोजनेस बढ़ सकती है। भाई, करियर की बात करें तो अपनी वैल्यू अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। क्वाइट कॉन्ट्रीब्यूशन भी कॉन्ट्रीब्यूशन ही होता है। आज का मंत्र, अपनी फीलिंग्स को समझना जरूरी है, उनको भगाना नहीं।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर रहती ही रहती है। भाई, किसी प्रॉमिस या कमिटमेंट को जल्दी में एक्सेप्ट करने से पहले डिटेल्स चेक करना ये जरूरी है। क्रिएटिव आइडियाज स्ट्रॉन्ग रहेंगे और वीकेंड या फ्यूचर प्लान्स का एक्साइटमेंट मूड को लिफ्ट कर सकता है। शाइन करना जरूरी है, लेकिन डिटेल्स देखना भी।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: भाई, आज एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन बहुत कुछ क्लियर कर सकती है। जो बात काफी टाइम से माइंड में पेंडिंग है, उसे आराम से डिस्कस करने का वक्त आ गया है। भाई, काम में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है, एक सीक्रेट वेपन की तरह। आज का मंत्र, परफेक्ट नहीं, पर्पसफुल होना जरूरी है।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: भाई, आज स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ सकती है। लिब्रा, बस आपके लिए यही है कि बैलेंस, रिलेशनशिप्स और डिप्लोमेसी नेचुरली हाईलाइट होंगे, लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में अपनी प्रायोरिटीज को लास्ट में मत रखिए। आज का मंत्र, बैलेंस का मतलब खुद को भी इम्पोर्टेंस देना होता है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज इमोशंस डीप होने वाले हैं, बट हर फीलिंग को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। अपने लिए थोड़ा सा पीसफुल टाइम निकालिए। लव लाइफ में वार्मथ और अप्रिसिएशन का मोमेंट आ सकता है। वर्क में आपको पेंडिंग काम को पकड़ना होगा, नहीं तो ये टूल पकड़ता जाएगा। मैं जो जरूरी समझता हूँ उस पर एक्शन लेना जरूरी। आज का मंत्र,
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: भाई, ऐसा लग रहा है कि आप एडवेंचर के मूड में हैं, लेकिन आज होम और क्लोज रिलेशनशिप भी अटेंशन मांग रहे हैं। किसी प्लान को गुड इनफ होने पर एक्सेप्ट करना भी स्मार्टनेस है। हर चीज को परफेक्ट बनाना जरूरी नहीं। अरे, पैनिक मोड में मत जाइए, बाहर निकलकर सॉल्यूशंस ढूंढ के लाइए।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: कैप्रिकॉर्न, आपकी जो टू डू लिस्ट है वो आपको बुला रही है। बस स्टार्स कह रहे हैं कि पॉज भी तो करो। अरे, थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। करियर में कम्युनिकेशन मेजर्ड और प्रैक्टिकल रखिए। किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को ड्रामेटिक बनाने के बजाय सिंपल और क्लियर रखें। आज का मंत्र, हर मिनट प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, बैलेंस रखना जरूरी है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: भाई, आज एक सिंपल प्रैक्टिकल

0: चॉइस आपके बड़े प्लान्स को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। रूटीन का बोरिंग वही टास्क अनएक्सपेक्टेड इंस्पिरेशन से बदल सकता है। वर्क या रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन रखिए और किसी आइडिया को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत करिए क्योंकि वो यूजुअल अप्रोच से डिफरेंट है, हो सकता है कुछ अलग कर जाए। स्मॉल स्टेप्स बिग विजन।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस। अरे साहब, आपकी जो इंट्यूशन है वो काफी कमाल का चल रहा है। दूसरों की फीलिंग्स को इजीली पिकअप कर सकते हैं, इसलिए अपनी इमोशनल बाउंड्रीज का भी ख्याल रखिए। क्रिएटिव वर्क, म्यूजिक, राइटिंग या पीसफुल मी टाइम के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है। किसी को चेंज करने की कोशिश से बेटर है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। आज का मंत्र, मेरी इंट्यूशन जरूर मेरी गाइड है लेकिन मेरे पीस इसके आगे कोई नहीं आएगा।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 9 से वादे की अंधेरी रात के बाद एक बार फिर से सूरज आता है अपनी किरणों को साथ लेकर आपके दिन को रोशन करता जाता है। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोचें कि अपना दिन बस शुरू ना करें, अपना दिन डिजाइन करें। वैसे कभी नोटिस किया है कि कुछ मॉर्निंग्स में आँख खुलते ही फोन चेक, फिर मैसेजेस, सोशल मीडिया, न्यूज़, और पता नहीं चलता कि हमने अपना दिन स्टार्ट किया या दुनिया का एजेंडा पढ़ पढ़ के अपना वक्त निकाल दिया है ना। इसलिए सिंपल सा मंत्र है, रात को सिर्फ अलार्म सेट मत कीजिए, अपने नेक्स्ट डे का पूरा प्लान कर लीजिए, डायरेक्शन सेट कर लीजिए। भाई सोने से पहले एक स्मॉल लिस्ट बना सकते हैं, उसमें टास्क लिख सकते हैं कि आज क्या काम होने वाला है, और टाइम को ब्लॉक कर लो, यानी कि आपको बताया कि 8 से 10 आप डीप वर्क में घुस जाएंगे, 10 से 10.5 ईमेल्स, मैसेजेस, बीच में कुछ भी हो सकता है, नहीं उसके लिए थोड़ा सा टाइम रखो। हाँ, लेकिन लंच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह तो आप निकल ही लिए हो, लेकिन लंच का टाइम ही नहीं मिला यार, ये एक्सक्यूज़ ठीक नहीं है। वापस आकर थोड़ी सी एक्सरसाइज, 8 बजे रात को फैमिली टाइम, जल्दी सोना है, अगले दिन क्या करना है थोड़ी सी प्लानिंग। वैसे हर इंसान का एक हाई एनर्जी विंडो होता है, किसी को मॉर्निंग में ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, किसी को आफ्टरनून में, और कुछ लोग इवनिंग में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो अपना पैटर्न सेट कर लीजिए ना, कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और हाँ, फोन को अपना बॉस मत बनने दीजिए, ऐसा नहीं कि बस वो ट्रिंग ट्रिंग करके आपको कभी भी आपको बुला ले, नोटिफिकेशन उसके साथ शुरू हो गए डिस्ट्रैक्शन, हाँ ये ठीक नहीं है। इसलिए सोच लीजिए कब क्या करना है। अरे साहब, पूरा जीकर ही तो मरना है। इट्स 38 past 9 द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुपर सनी मॉर्निंग।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा इतने सारे गेस्ट यहाँ पर आते हैं और अभी बस दो तीन लोग यहाँ पर हो के आए एंड दे लविंग द सॉन्ग्स, लेकिन साथ में कहते हैं जो पुराने गाने थे ना उनके लिरिक्स अभी तक याद है, लेकिन जो नए गाने हैं उनको समझना, उनके साथ रैप करना इज नॉट इजी एट ऑल। हाँ ये तो सच बात है। वैसे आप अंताक्ष भी खेलते हैं तो पुराने गाने ही दिमाग में आते हैं ना, ये नए गाने, बट दिस वन इज न्यू ऑन द ब्लॉक। चलिए देखते हैं कि एक बार फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या करते हैं। विवान इज द मूवीज ने विवान या वन अब क्या है एग्जैक्टली पता नहीं, डबल वी एन डबल ए एन एन। शादी के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ और इससे बड़ा रोल मुझे मिल नहीं सकता था, वो है पापा का रोल।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: काउ घी
1: रेडियो मस्ती
0: नॉर्थ साउथ
1: 103.5
0: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4
0: सेंटर
1: 99.4
2: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: 24th of September. Time check. It's 10 a.m. हम सुनने जा रहे हैं संक्षिप्त समाचार.

0: स्टूडियो में आगे सुमेर उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। शागो समझौते के सिलसिले में मुर्शस और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकूज ने नई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना पड़े तो वे करेंगे। शागुस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की जरूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो। राशन वाले चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं लाया गया, लेकिन खेपों को मुर्शस तक पहुंचाने में देरी हो रही है। कल दोपहर बाद स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने एक विज्ञप्ति जारी की और कहा कि मध्य पूर्व की जंग की वजह से समुद्री परिवहन पर असर पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कॉर्डिनल मोगिस प्यात की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए, सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। विदेश में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ 7 महीनों की जंग के बाद आज भी ईरान नहीं झुकेगा और इस युद्ध के लिए वो एक कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। वे संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता पर जितना जुर्म ढाया जाएगा या दबाव डाला जाएगा उतना ही उनकी ताकत बढ़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play.

0: अच्छा कल हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन साहब को कितना ज़्यादा पसंद है म्यूज़िक और म्यूज़िक से घिरे रहना। अगर बजा नहीं सकते कोई इंस्ट्रूमेंट तो सुन सकते हैं, अप्रिसिएशन दे सकते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि आराम से बैठकर गानों को सुनो। ये आपको मिलता है म्यूज़िक का डोज हर रोज़ राइट आरएम टू। चलिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद चलते हैं गाने की तरफ। और यहाँ पर कहते हैं गुड मॉर्निंग की बात है भाई, इट्स 20 past 10 इन द मॉर्निंग। और वहीं पर कहते हैं एक प्यासा गाना हो जाए हमारे लिए। जहाँ जरूर जरूर प्रीति हैं और अमोही से हैं। अगला गाना टू फैमिली रिकाय और उन सभी के लिए जो हमारे साथ दे रहे हैं, टू ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और साथ में गीता सीता ये शातु बनारस से, हेलो जी गुड मॉर्निंग। अच्छा होता है कि भागा दौड़ी में जिंदगी कटती जाती है और थोड़ा सा मी टाइम मिलता है अभी इसी वक्त जब घर पर है लेडीज़ एंड कुछ प्लानिंग चल रही है कि क्या किया जाए शाम को या फिर वीकेंड में, जो भी है अच्छी बात है। लेकिन अपने तक मत रखिए, हो सकता है कि काम को थोड़ा डिवाइड कीजिए। सारी सरदर्दी अपने लिए रखकर आप काफ़ी बिजी हो जाएंगे और ये वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसलिए बांटो, खुशियाँ हो गम हो बांटो और फिर देखिए साहब उसका जो नशा है ना, जैसे म्यूज़िक का नशा था, वो बढ़ता ही जाएगा।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: बस थोड़ी देर में चलने वाले हैं फैशन टिप्स की तरफ. स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन एंजॉयिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नहीं, जब भी मैं देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो चाहे का वर्ल्ड हो या फिर गैजेट्स हो, रोबोट्स हो, अब तो साहब ऐसा है कि एक रोबोट आ गया है जो घर में चाइना में लॉन्च हो गया है। उसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन ये सच है कि वो आकर आपका बिस्तर बना देगा, आपके लिए खाना तैयार कर देगा, घर की चीज़ें इधर से उधर जो इधर उधर पड़ी थी उनको सब समेट देगा। ये सब बेसिक काम तो बस वो करेगा रोबोट, नहीं करता आराम। और वहीं पर गाड़ियों की बात करें तो टेक्नोलॉजी इज टोटली ऑन द राइज, यानी कि ऐसी कारें बन रही हैं जो कि अपने टायर उठा सकती हैं। नहीं, आप सोचिए कहीं पर गड्ढा है और आप नहीं चाहते कि उस गड्ढे में से गुजरें, सो आप एक टायर को उठाकर आगे जाइए और फिर दूसरा टायर उठाइए फिर निकल जाइए। ये स्पेशली काम करेगा जब आप हिली एरियाज में हैं, कहीं पर पत्थर है और आपको वहाँ से निकलना है। इट इवन इंक्रीज इट्स हाइट, अनबिलीवेबल। और ये भी सच है कि केकड़े की तरह, जी हाँ, क्राब की तरह तिरछा चल सकती है। कैन यू बिलीव दिस? कभी कभी पार्किंग के चलते हमें इशू हो जाती है कि अब इतना जगह ही नहीं है कि आप घुमा कर रिवर्स करके गाड़ी लगा पाएँ, तो वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, केकड़े की तरह चल सकती है। जस्ट इमेजिन। चलिए, आने वाले टाइम में बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, बट इट्स गोना कम एट अ कॉस्ट। जितने सारे सेंसर्स, वहीं पर एक खराबी पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकती है। सेंसर्स का होना, इंटेलिजेंट मल्टीटास्किंग करना, एट द सेम टाइम बैटरी पर ज़्यादा वेट पड़ना, ये सब सोचा जा रहा है और धीरे धीरे बहुत सारे रियलिटी चेक्स किए जा रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में ये सब हो पाएगा। वहीं पर रोबोटिक डॉग्स, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है फार्म्स के अंदर, लेकिन जब वो शीप आकर मारते हैं टक्कर, तब होती बनाने वालों को थोड़ी सी फिक्र कि ये असली जिंदगी में चलेगा कि नहीं। हम हैं यहीं बताने के लिए, गिविंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम बी टाउन एंड द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड।
0: वेलकम टू आर एम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti. जैसा आप बात करें हम फैशन टिप्स की, तो बहुत ज़रूरी है वार्म रहना। कभी कभी लगता है कि आप स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हाँ लेकिन फिर भी कंफर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की फैशन इंस्पिरेशन लेते हैं फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, स्पेशली उसकी ट्रैवल मीट सिटी कैजुअल वाइब से। रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण से लुक से थोड़ा सा इंस्पायर होकर निकल सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल लेयरिंग को एफर्टलेसली स्टाइलिश बनाना ये जरूर सीख सकते हैं। जहाँ मॉर्निंग में थोड़ी सी ठंड होती है वहीं पर आपको ज़्यादा हैवी कोई जैकेट या कोट पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में यू कैन वेयर समथिंग लाइक अ लाइट कार्डिगन, एक पतली सी जैकेट जिसको आराम से निकाल भी पाए, एक लाइट वेट स्कार्फ इंस्टेंटली सिंपल आउटफिट को एलिवेट कर देता है। वहीं पर इंस्पायर्ड कैजुअल वाइब के लिए स्नीकर्स ये जवानी है दीवानी, कंफर्टेबल स्नीकर्स परफेक्ट हैं। जीन्स हो, बेसिक टी हो, ओवरशर्ट या जैकेट, स्नीकर्स भी वो बनी वाली लुक, हाँ जैसे था जय जवान जय किसान। वहीं पर कलर्स में भी ऑटम वाली फील आ सकते हैं, रस्ट, बगंडी, मस्टर्ड, इवन चॉकलेट ब्राउन, बहुत कमाल की, फॉरेस्ट ग्रीन, इवन क्रीम फॉर दैट मैटर। एक स्टाइलिश वॉच, सनग्लासेस, कॉम्पैक्ट क्रॉस बॉडी बैग या फिर मिनिमल ज्वेलरी, बस हो गया इनफ।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: Well, good morning. Time check, exactly 11 a.m. मिलते हैं सुमेरा से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने आज एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। मंगल को कैब दफ्तर में उत्पन्न घटना का उन्होंने के बारे में उन्होंने झुठलाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र नंबर 6 में मंगल के दिन वो अपने मतदाताओं से नहीं मिलते हैं। उन्होंने कहा कि गए मंगल को वो अपने दफ्तर में एक समझौता तय कर रहे

थे। शागो समझौते के संदर्भ में मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच डोनाल्ड ट्रंप के नए दावे पर ओलिविए बोंकुर्त ने नई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर समझौते में कुछ जोड़ना है तो वे करेंगे। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष के मुताबिक एक ऐसा हल तलाशने की ज़रूरत है जिससे सभी पक्ष सहमत हो और किसी का भी नुकसान न हो। डोनाल्ड ट्रंप की निंदाओं के बावजूद ओलिविए बोंकुर्त को उम्मीद है। शागोस रेफ्यूजी ग्रुप के अध्यक्ष का मानना है कि मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की फ़ोन पर हुई बातचीत हिम्मत अफजाई करती है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के खंडन पर अफसोस जाहिर किया और हल्की उम्मीद जताई ताकि शकुशिन लोगों के साथ की गई नाइंसाफी की इसलाह हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है। आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया। पिछले महीने कार्डिनल मोहिस प्यात की मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सभी ने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को भी अमल में लाया जाना चाहिए। विदेश में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईरान के साथ जंग वगैरह पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति की इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान व्यापार समझौते को जनवरी 2027 तक बढ़ाया जाएगा, जो इस साल के नवंबर महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसा आप क्या करें, ये जो पुराने गाने इतने फेमस है कि चाहे किसी भी वर्जन में आ जाए उतने ही पॉपुलर रहते हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, लेकिन मुड़ के देखना ये जरूरी है कि आप कितने आगे निकल आए हैं, अकेले नहीं सबको साथ लेकर। Ladies and gentlemen, 24th September, 11:12, और हमारे साथ एक बड़ा सा ग्रुप है। हेलो, नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: अच्छा, मैंने सुना कि ये कात कोको से आए हैं, और मैंने ऐसे कहा कि ठीक है, चार कोको की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में, एक कोको तो दे दो पहले। हाँ, लेकिन एक किसी से बात करने का मौका मिल गया। हमारे साथ कौन है? आपका नाम?
3: बबीता।
2: बबीता जी, बॉलीवुड की बबीता हैं, और उनका नहीं, वो थोड़ी सी बुड्ढी होगी, मैं थोड़ी जवान हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि आपका ग्रुप क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब आप पहले तो रेडियो स्टूडियो में आ गए, थैंक यू सो मच, थोड़ा रेडियो के बारे में समझा। बाकी आप बताइए क्या हो रहा है, ग्रुप में कौन कौन है, क्या प्लान है आज के?
3: जी, आज हम लोग एक्सकर्शन के लिए निकले हैं। सुबह 8 बजे निकले वहाँ से। अभी पहली जगह जो है यहाँ पर आए हैं MBC, उसके बाद हम लोग बीच पे जाएंगे, फिर कोंफा बीच, वहाँ पर लंच करेंगे, दिन वहीं पे बिताएंगे, फिर घर जाएंगे।
2: मैं कहता हूँ अगर मेरी बारी होती ना इस ग्रुप में शामिल होने की, इतनी एक्साइटमेंट रहती, खाने पीने के साथ पूरी प्लानिंग। और वैसे कहते हैं जब काम शुरू सही होता है ना
3: जी,
2: तो बाकी सब कुछ ठीक जाता है। तो रेडियो के साथ, म्यूजिक के साथ अपने दिन की शुरुआत की है, वंडरफुल। मुझे पता है कि आपको पुराने गाने भी पसंद हैं, तो मैं पूछ रहा था भाई साहब से, उन्होंने कहा मैं अशोक हूँ, कुमार तो नहीं लेकिन किशोर कुमार की तरह गाना गा सकता हूँ, और वो है चलते चलते, राइट? वैसे आप गाना गाती हैं?
3: कभी कभी।
2: कभी कभी, कहीं वो वक्त अभी तो नहीं, गाएंगे आप थोड़ा सा?
3: नहीं
2: नहीं, ऐसा है कि देखो चलते चलते है, फिसलते फिसलते नहीं। बहुत ही प्यारे गाने की रिक्वेस्ट की, और सच बात है चलते चलते कभी हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपनों को भी साथ लेकर आगे चलना बहुत ज़रूरी है। एक साथ चलो, और जब चलो तो हमसे ज़रूर मिलो, हमेशा RM2 पर आपके साथ, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूज़िक, ये गाना आपके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti

0: A beautiful song in the voice of Alka Yagnik and Kumar Sanu. अगर आपको भी आता है गुनगुनाए तो जानू.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा आपने कभी सुना नहीं हुआ कि आपको सितंबर के महीने में एक बोनस मिल सकता है. हमें मिल गया. देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वो हमारे लिए एक अप्रिसिएशन फैक्टर होता है. और अभी आए थे कातकोको से एक बड़े से ग्रुप और अब आ गए हैं क्वीन विक्टोरिया से एक बड़ा सा ग्रुप एज वेल. नमस्ते आप सभी को.
3: हेलो. हेलो.
0: क्या जोश है, क्या अंदाज है, क्या वाइब्रेशन, क्या एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है. और सामने है कोई हमारे बताने के लिए. आपका नाम?
4: मेरा नाम है फिफी.
0: अरे क्या बात है. वेरी नाइस. तो बताइए अपने ग्रुप के बारे में. और मैं देख रहा हूँ सब बड़े खुश हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं. तो कहाँ निकल पड़े हैं आज?
4: आज हम एमबीसी को विजिट करने आए हैं और

0: समुंदर जाएंगे,
1: समुंदर में नहा के नहीं, नहाने का प्लान है या फिर वहां पर जाके खाने का प्लान है?
0: नहाने के नहीं,
1: नहाने का नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन प्लान पूरा है मतलब। और एमबीसी रेडियो जो हमेशा आपकी सेवा में रहता है, अगर थोड़ा सा आइडिया मिल गया आपको कि कैसे कार्यक्रम चलता है, क्या होता है, कैसा लग रहा है?
0: बहुत अच्छा लगा, और सारे फ्रेंड हम सब लोग बहुत खुश है यहाँ आकर ये सब देखने के लिए।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। हम तो चाहते हैं कि आपकी कोई भी सिचुएशन, देखिए जब दिन की शुरुआत होती है तो म्यूजिक साथ होता है और रेडियो चलता रहता है तो लगता है कोई हम सफर है, एक साथ ही है जो 24/7 आपका साथ देता है। तो बस अगली बार आप सोचें कि अकेला ना पड़ जाएं, कैसे गाएं, कैसे गुनगुनाएं, तो बस रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करके सेट हो जाएं। लेकिन मैं चाहूँ कि आप सब लोग जोश में आ जाएं क्योंकि गाने की रिक्वेस्ट की है, और गाना कौन सा है?

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: जैसा वैसा हो, बताएं कि 24th of September आज एक स्पेशल डे इसलिए भी क्योंकि काफी जगह मनाया जाता है वर्ल्ड बॉलीवुड डे। अरे क्या बात है,

0: एक फन ऑब्जर्वेंस डे है, ग्लोबल पॉपुलैरिटी है इसलिए, और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो बॉलीवुड सिनेमा की है वो तो कमाल की है, राइट? आज का स्पेशल डे है वर्ल्ड बॉलीवुड डे। अरे साहब, बॉलीवुड सिर्फ इंडिया की फिल्म्स नहीं, म्यूजिक, डांस, फैशन या इमोशंस के थ्रू दुनिया भर के ऑडियंसेस को कनेक्ट करने वाली एक कल्चरल फिनोमिनन है। तो आज का दिन हो जाए थोड़ा सा और फिल्मी, यानी कि अपना फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग प्ले करने का वक्त आ चुका है। फेवरेट डायलॉग हो उसको याद कीजिए और थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल स्पार्कल अपने डे में ऐड कीजिए। वैसे सोचिए, बॉलीवुड के गाने नहीं होते तो फिर लगता है कि हर दिन कुछ गुनगुनाने को नहीं है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए गाने गुनगुनाओ, कुछ अच्छा लगे तो हमें भी बताओ।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Masti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Masti.
1: Radio Masti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार.
5: नमस्कार आदाब. मंत्री महेन गंगा प्रसाद ने आज एक प्रेस सम्मेलन बुलाया. मंगल को एक कैब दफ्तर में उत्पन्न घटना का उन्होंने झूठ करार दिया है. उन्होंने कहा कि चुनाव क्षेत्र नंबर 6 में मंगल के दिन वो अपने मतदाताओं से भेंट नहीं करते. उन्होंने कहा कि गए मंगल को वे अपने दफ्तर में एक समझौता तय कर रहे थे. भारतीय उच्चायोग ने आयुर्वेद दिवस के संदर्भ में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फेनिक्स में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया. इस साल का विषय आयुर्वेद फॉर ए हेल्थियर टुमारो, वन हेल्थ वन फ्यूचर रखा गया. गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर कुकुल ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बूढ़े कैदियों की हालत पर फिक्र कर रहा है. आयोग ने अपने न्यूज़लेटर में इसका उल्लेख किया. पिछले महीने कार्डिनल मोगेस्पियात ने

0: मांग पर एक पहली बैठक लगाई गई। सभी संबद्ध पक्ष एकत्र हुए थे। सबने मंजूरी जताई कि कदम उठाना चाहिए और इस दिशा में एक खास प्रोटोकॉल को अमल में लाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज से यूएफए नेशंस लीग का पांचवा संस्करण शुरू होगा। आज मैच खेला जाएगा, 8 मैच होंगे। आज रात 11:45 से फुटबॉल का पहला मैच होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एयर स्पेस को करीब 45 मिनटों के लिए बंद किया गया। उड़ानों में देरी हुई, वजह रनवे पर एक ड्रोन नजर आया। सुरक्षा के तौर पर फौरन हवाई गतिविधियों को रोक दिया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play and NBC.MU.
2: Retro Rhythm.
3: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम। 12:08 हो चुके हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून। आरम टू रेडियो मस्ती पर आप सुन रहे हैं रेट्रो रिदम और मैं हूँ आपके साथ पूनम। 12 बजे जब होता है ना तो ऐसा हास होता है कि कितने पुराने गाने सुन लो, कितने गाने सुन लो, नए सुन लो, बस कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। और अगर आपका कनेक्शन इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको पुराने गाने पता है कि इस समय चलते हैं, और अगर चलते हैं तो वहाँ पर आज चलने वाले हैं सुपर हिट गाने जो कि आपके नून को बनाने वाले बहुत ही मस्त मस्त। हमारे साथ रहिए, 60s, 70s, 80s और 90s के गानों में हम आपके साथ रहेंगे। एंजॉय कीजिए अपने गानों को। अगला गाना सुनेंगे आप विक्टोरिया मूवी से किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में, दो बेचारे बिना सहारे। अरे क्या करें भाई, जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए तो गाना होना ही चाहिए ना कुछ स्पेशल। तो ये है आप सबके लिए
1: RM2 Radio Masti। Feel the Masti।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:20 हो चुके हैं दोस्तों, आज है वर्ल्ड बॉलीवुड डे, यानी कि 24 सितंबर ये दुनिया भर में मनाया जाता है। जिनको भी बॉलीवुड से प्यार है, एक्टर्स से प्यार है, एक्ट्रेसेस से प्यार है, और कहते हैं हमारा जो रेडियो है उसको तो सिंगर से प्यार होता है, और जब होता है ना तो दिल खोल के होता है, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं और बॉलीवुड को अपना लेते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर ऐसे मूड्स के लिए गाने बने हैं। चाहे आप दुखी हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आपको कोई डांस करना हो, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी मौसम हो, हर तरह के गाने आपको बॉलीवुड में मिलेंगे। वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि बॉलीवुड है ही आप सबके लिए, क्योंकि बनाता है इमोशंस के ऊपर गाने, और जब इमोशंस तो हम सबके एक जैसे ही होते हैं, चाहे वर्ल्ड में इस समय कोई भी हमारे साथ जुड़ा होगा ना, उनके इमोशंस सेम ही होंगे, कहीं कुछ बदलाव नहीं होता। हम अगर हंसते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, ये सबके साथ इक्वल होता है। तो चलिए जी, ले लेते हैं 2-3 मैसेजेस। आकाश मनसुख जी जुड़े हुए हैं बाबू से और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश कर रहे हैं। जीना जी साथ दे रही हैं पेरिस से और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। विश्वानी धुमन जी साथ दे रही हैं एज यूजुअल, और जो बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस करती हैं, थैंक यू।

0: वाणी जी ऐसे साथ दीजिए। यले श्याम जी सभी को कह रहे हैं, भाई जिन्होंने खाना अभी तक नहीं खाया है खा लीजिए, क्योंकि मैं खा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है यलेश जब आप अपनी प्लेट भेजते हैं खाने की और उसमें बहुत सारे खाने होते हैं, सलाद होती है और खाने के साथ में एक ग्लास पानी होता है। बट पानी मत रखा करो, पानी पीना खाने के साथ में खराब कर देता है। तो चलिए जी, प्रकाशवंती जी साथ दे रही हैं बेल्जियम से और ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से, इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच आप सभी का। बट आज हम आपको इतना ही बोलेंगे कि बॉलीवुड का डे है और गाने आप सबके पसंद के हैं, तो अपने मैसेजेस भेजते रहिए 5499124 पर। इंजॉय कीजिए अपने इस गाने को।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:31 हो चुके हैं दोस्तों, आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, आपके कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर, और हमारा दिल इतना खुश होता है क्योंकि रेट्रो रिदम जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ एक यादों का जरिया है,

0: यादों के लिए आपके लिए एक रास्ता है, जहाँ पर हम ये पुराने गाने चलाते हैं वहाँ पर आप उन रास्तों में पहुँच जाते हैं जहाँ कभी आप चले थे। और मुझे उम्मीद है कि ये गाने आपके दिल को सुकून दे रहे होंगे। ये पुराने गानों की बात ही अलग है। आप रफ़ी साहब की बात करो, किशोर दा की बात करो, लता जी की बात करो, आशा जी की बात करो, बप्पी लहरी की बात करो, सुरेश वाडकर की बात करो, इनके गानों इनकी आवाज़ों में कहते हैं कि हमने ऊपर वाला तो नहीं देखा, पर कहते हैं कि अगर किसी ऊपर वाले की कोई आवाज़ होगी तो शायद की जैसी होगी। और हमने इतने सारे गाने चलाए हैं, रफ़ी साहब के लिए अभी चलाया, अभी लता जी का चलाया, और हम एक ऐसा आवाज़ सुनाने जा रहे हैं आपको जो आपको सच में बहुत पसंद होगी। किशोर दा की आवाज़ में भी दम था, पर कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ना, ये डायरेक्टली भगवान की आवाज़ है और बहुत लोग इस बात को मानते हैं। तो इन्जॉय कीजिए पुराने गानों को, और जो भी हमारा साथ दे रहे हैं देते रहिए। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5491294 पर। और बहुत सारे बर्थडे विशेज आ रहे हैं, ये गानों के बाद हम आपके बर्थडे विशेज भी लेंगे। जिसके लिए भी है भेज दीजिए, भूलिएगा नहीं वरना वो इंसान डांटेगा, आपने पूरा दिन निकल गया और मुझे मेरे को बर्थडे विश नहीं किया। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का बर्थडे भूल जाते हैं, फ्रेंड्स का भूल जाते हैं, तो मत करना ऐसा काम। कैलेंडर के पास जाओ, चेक करो कोई भूले तो नहीं ना। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:41 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहां पे आपकी कहते हैं ना वो ज़माने की बातें, जहां पर कहते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स होते थे, एक्टर्स होते थे, सबकी एक टीम हुआ करती थी और जो टीम हुआ करती थी उसमें उनके अपने अपने गाने होते थे, अपनी अपनी चॉइसेस होती थी, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कहते थे कि भाई देखिए ये जो मैंने गाना लिखा है तो आप इसको अपनी मूवी में डाल सकते हैं, मुझे पता चला है आप ये मूवी बना रहे हैं। कोई बोलता था कि आप ये जो बॉलीवुड में आपने ये वाला गाना लगाया है वो अभी तक क्यों नहीं चलाया, क्यों नहीं लगाया। तो ये आपस में उनके एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी और बॉलीवुड में तभी जब इतना ज़्यादा एक साथ क्लोजनेस होती है और एक साथ बनाते हैं बैठ के, चाहे धुन बनाते हैं, चाहे लिरिक्स लिखते हैं, चाहे बॉलीवुड में एक्टर्स उस गाने को पसंद करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं हाँ इसके ऊपर मैं एक्ट कर सकता हूँ। कई बार एक्टर बोल देते थे कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, मैं ये गाना बहुत टफ है, वो बोलते थे क्यों नहीं होगा आप कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि रिजेक्ट कर दिया एक्टर्स ने, बट हमारे सिंगर्स जो हैं कॉपी करते थे उनको कि भाई आप ही की तरीके से, आप ही की स्टाइल में हम गाएंगे। तो बहुत सारे गाने ऐसे रहे, चाहे जैसे शमी कपूर साहब की याहू गाना था, बहुत ही पसंद आया था। तो हम तो यही कहेंगे आपको, पुराने ज़माने के बीच में रहना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत गाने होते हैं उस टाइम के। और ये गाना जो है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आए हैं, इस गाने के बाद आपके मैसेजेस लेते हैं, तब तक एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Your number one Bollywood station.

Retro Rhythm. बारह बजकर 53 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। और मैं तो आपको बता रही हूँ कि जब आपके गाने चलते हैं, आपकी पसंद के गाने चलते हैं, पर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं हमें कि कोई सैड वाला और कोई वो, तो कई बार हमें भी नहीं समझ आता कौन सा गाना चलाएं कौन सा नहीं चलाएं, पर हमें दिल करता है कि मतलब आपका जो मूड है ना उसको बना के रखें, इसलिए हम मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से कि आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सैडी सैडी ना हो जाए, इसलिए आप नाराज मत हुआ करो। यहाँ पर इतना प्यार देते हो और उसके बाद फिर नाराज हो जाते हो, कहाँ जाएंगे हम। तो चलिए जी, वीना जी साथ दे रही हैं और अपने हस्बैंड को बस इतना ही कहना चाहती हैं, मैं तुमसे प्यार बहुत करती हूँ पर तुम समझते नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, हस्बैंड समझते नहीं पर सारे हस्बैंड समझा करो। वाइफ्स इतना प्यार से बोल रहे हैं कि आपके लिए वो गाना चलवाना चाहती हैं। सुनो फिर, इंजॉय कीजिए। अमृता परशुराम जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं प्रोग्राम को। सुदेवी चाह रही हैं कि एक प्यारा सा गाना हो जाए, तो आपका तो मैंने गाना चला दिया पर आपने जो बोला था गाना वो नहीं चलाया, आप उसी मूवी का दूसरा चलाया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। बाम्बू से धनेश्वर जी अपनी वाइफ सुनीता जी के साथ दे रहे हैं साथ, और रेखा, निशा, रानी, मीना, ऋषि, देवदोस, पूरी फैमिली और सिचरन फैमिली साथ दे रही हैं, इंजॉय करिए, थैंक यू सो मच। ललित जी, ललिता रामदीन जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। देव जी पैरिस से साथ दे रहे हैं और अपनी वाइफ को इतना कहना चाहते हैं, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ समझ क्यों नहीं आता। देखिए भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम कभी हस्बैंड्स की है कभी वाइफ की है, तो मुझे तो लगता है ये थोड़ा सा हो ही जाता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, पर इतना सच बात है कि सब पति भी प्यार करते हैं, पत्नियां भी प्यार करती हैं, बस अपना अपना बताने का अंदाज अलग होता है, एहसास अलग होता है। पर कोई बात नहीं, हम भी तो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं ना, क्यों ना करें। आपके आपसे नहीं मजाक करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, हम कहीं नहीं जा सकते। राजन रघुपत जी जी ये हैं साथ में लंदन से और इंजॉय कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं, देखो पूनम जी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं, आपका जब मैसेज आता है मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। डारिन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, पादू फैमिली साथ दे रही है, मालिनी जी साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। रवि जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, और बहुत सारे लोग साथ साथ जुड़ते रहते हैं पर कहाँ चले जाते हो, जब मैं बोलती हूँ मैसेज कर दो तब तो नहीं करते हैं, फिर उसके बाद में जब मैसेजेस की बारी आती है तब चलता है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट आवर का वेट करेंगे। साथ में अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो 5499-1294 आपको पता ही है, बट अगर आपको कॉल करना है तो आपको नंबर पता है

0: T5 एंजॉय कीजिए अपने कानों को।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहा है।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से। रजनी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही, हमारे देश को कुछ बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी के अंतर्गत रैंकिंग कुल 4 है। 172 देशों को लेकर जांच की गई, मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। क्या मॉरिशन संविधान भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित करता है? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कल प्रकाशित एक पोजीशन पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है। इसमें सुधार लाने की मांग सरिता बुजित ने सच्चे व्यक्ति की राष्ट्रीय इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय सभा में पूर्वी भाषाओं का इस्तेमाल हो सके। आयोग का नेतृत्व सत्यजीत पुले कर रहे हैं और उन्होंने अभी चल रही बहसों के लिए स्पष्ट ढांचे की बात कही। राशन चावल की सप्लाई को लेकर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मॉरिशस में जो खेप आने वाली है ये ज़्यादा समय ले रही है, ज़्यादा देरी से ये पहुंच रही है, इसीलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में ये बात कही गई है कि मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव के परिणामों के चलते ऐसी स्थिति बन आई है कि स्थानीय मंडी में इसकी कमी महसूस की जा रही है। विदेशी समाचारों में यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि आज पूर्वी तुर्की इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर लगभग 6.5

0: दो मील थी। इतनी कम गहराई का मतलब है कि सतह पर झटके ज्यादा तेज महसूस होते हैं, जबकि उतनी ही तीव्रता वाले गहरे भूकंप में झटके कम तेज होते हैं। तुर्की में लोग घबराए दिखे। रुख उड़ीसा, उड़ीसा के मलकानगिरी में चक्रवात अर्नब ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से ओडिशा का मलकानगिरी जिला पानी में डूब चुका। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, कुछ जगहों पर पुलों को भी नुकसान पहुंचा, जिससे कि क्षेत्रों का आपसी संपर्क टूट गया। जानकारी के अनुसार मलकानगिरी में लगातार भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। अपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। ओल्ड स्कूल लेन कांजाबल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागैन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कांजाबली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। रुथ रॉयल नोवेल दी कुवैत में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नलिनी पसन पदार्शी नाम ननू जो नालिनी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पति श्री आनंद पसन के घर रुथ रॉयल नोवेल दी कुवैत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिपाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। शांतिनगर रोड बेलमाव में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री प्रभु पैदाशी नाम सुंतु जो मानती नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके पति श्री कृष्ण प्रभु के घर शांतिनगर रोड बेलमाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथकोको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:10 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं रेट्रो रिदम के साथ, मैं साथ में हूँ आपके पूनम। बहुत सारे मैसेजेस और कॉल के बाद हमने कुछ मैसेजेस चुनते हैं और हम एहसास करते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है ये मैसेज आप सबके लिए, क्योंकि इस सबका कहीं ना कोई कनेक्शन जुड़ा होता है और वो एहसास कर रहा होता है कि प्लीज़ ये वाला ज़रूर बोलना। तो चलिए जी, आज बर्थडे है शांति लक्ष्मी जी पांडू जी का, आज वो 90 ईयर्स की हो चुकी हैं और सारा परिवार यानी कि सतन, कृष्ण, गीता, फी, कमला एंड रानो उन्हें विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे मामा, हमेशा खुश रहो। क्या बात है भाई, ऐसे बच्चे हों और ऐसे मामा ने इतना प्यार दिया हो, तभी तो ये कहते हैं ना सब कुछ उन चीज़ों को याद रख पाते हैं बच्चे, और फिर हर मोमेंट को, हर एक एक छोटे छोटे पलों को साथ बिताना चाहते हैं। तो हम भी आपको यही बोलेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के बीच में रहें, हमेशा RM2 रेडियो मस्ती को सुनते रहें जहाँ पर सारे गाने चलते हैं। मुझे पता है कि इस उम्र वालों को ये वाले गाने नहीं पसंद होते, पर आपकी जो बिटिया रानी है उन्होंने आपके पसंद का गाना भेजा है, तो हम बिल्कुल उनका गाना आपके लिए चलाएंगे और आपके लिए बस बहुत सारी दुआएं और प्रार्थनाएं करेंगे कि हमेशा आपकी लंबी उम्र होती रहे। साथ में दे रही हैं ज्योति जी शातो बनारस से और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। रीता जी रोजबेल से साथ दे रही हैं और कह रही हैं मेरे को बहुत स्ट्रेस था, कहां भाग गया इन गानों को सुनने के बाद, इसीलिए हम ऐसे गाने चलाते हैं जहां पे आपका सभी लोगों का मूड बना रहे, थोड़े से हंसी मजाक वाले, थोड़े से सैडी और थोड़े से कहते हैं ना जिससे आपको थोड़ी सी जो दोपहर में जब आप अपना खाना खा के आलस के पूरे मूड में होते हैं और कहते हैं अरे नहीं काम नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट चाहिए, उस वक्त हम ऐसे गाने चलाते हैं जहां पर आपको रेस्ट ना मिले, क्योंकि

0: आपने भी और बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इंजॉय कीजिए गानों को और साथ में जुड़े रहिए आर एम टी रेडियो मस्ती, जो कि आपके साथ है 24 आवर्स. इंजॉय कीजिए इस गाने को.
1: रेट्रो रिदम
2: आर एम टी रेडियो मस्ती.

0: रेट्रो रिदम। 1:23 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं सेकंड आवर में जहाँ पे आपका साथ दे रही है पूनम। और मैं तो आपको इतना ही बताऊंगी कि ये जो टाइम है ना, जहाँ पे बाहर बहुत गर्मी हो रही है, आई डोंट नो क्या हुआ है, मतलब इतनी गर्मी, पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये गर्मी होने का कि भाई गर्मी थोड़ी सी हो जाए और थोड़ी सी बारिश आ जाए, हमारे लिए पानी इकट्ठा हो जाए। पर जब आती है ना बारिश तो सारे जने हम यही कहने लगते हैं, अरे बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है। बिल्कुल नहीं कहना है, मतलब कुछ दिन हमने ये नहीं बोलना है, हमने बोलना है और गर्मी आए और गर्मी आए। पर वो जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए हम इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा सहलो भाई, क्या करें, ये गाने हैं। पर गाने के साथ साथ मैं अगर अब मैं आपको समुद्र की तरफ या नदी की तरफ ले चलूं और आपको एहसास हो जाए कि हाँ हाँ आप ठंडे ठंडे पानी में हो, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए भाई, ये गाना अगला चलेगा आप सभी के लिए, बहुत ही प्यारा सा गाना है। साथ में जुड़ी हुई है हमारे साथ पिचू, प्रविता, मालिनी, जश्मी, मेधा और बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त। साथ में हमारी जुड़ी हुई है वुमेन प्रिजन ऑफिसर्स बोबासा से मिस बुर्गला एंड बृंदा बख्तावर जी, साथ दे रही हैं। और थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने का, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू। अमर जी साथ दे रहे हैं और एक स्पेशल सॉन्ग की फरमाइश की है सारे सभी लिसनर्स के लिए और मेरे लिए भी। और मैं तो आपको कहूँगी जो नेक्स्ट गाना होगा वो आपके लिए होगा। रागिनी रामकिशन जी साथ दे रही हैं, सोनी नंदा जी साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और कल्याणी सेतुल जी साथ दे रही हैं, बहुत सारे गीता जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। और हम तो आपको बोलेंगे साथ रहो, कहाँ जाना, कहीं मत जाइए, खाइए पिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। और साथ में उन ड्राइवर्स को जिनको गर्मी लग रही है उनको लेके चलते हैं थोड़ी सी नदी के पास, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti. Radio.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहां पर हम आपके मूड के हिसाब से गाने चलाते हैं। होते सारे आपकी पसंद के हैं, बट कहीं कहीं हम अपने बीच में अपनी पसंद भी कहीं ना कहीं जोड़ते चले जाते हैं, जिससे थोड़ा सा मूड अच्छा रहे। तो चलिए जी, कहते हैं ना कि कुछ गाने दिन में अच्छे लगते हैं, कुछ गाने सन्नाटे में अच्छे लगते हैं, कुछ गाने ऐसे अच्छे लगते हैं चाहे उन्हें सुबह चलाओ, रात को चलाओ, दोपहर को चलाओ, शाम को चलाओ, जब मर्जी जिस मूड में हो आप, गुस्से में भी हो तब भी वो गाने चलाओ। कहते हैं वो गाने आपके मूड को कंप्लीटली बदल देते हैं और ऐसा एहसास होता है कि अरे ये गाना मैंने पहले क्यों नहीं सुना। तो चलिए जी, जो नेक्स्ट गाना आएगा वो आपकी पसंद के मूड के हिसाब से होगा, पर हम आपको इतना ही कहेंगे जितने भी लोग

0: हमें मैसेजेस भेज रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अभी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं करुणा जी और आज उनका बर्थडे है, मीता जी और शीला जी, आप दोनों उन्हें बधाई दे रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो। आज आपका बर्थडे है तो हमेशा कहते हैं ना कि कुछ गिफ्ट चाहिए या कहीं घूमने चलना है तो हमें बताना, नहीं जाना तो कोई बात नहीं फिर भी हमें बताना, हमें ले जाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ कि हंसी मजाक के जब मैसेजेस आते हैं तो दिल खुश होता है, हमारा भी और आपका भी। रोशनी जी साथ दे रही हैं और आपका ये ब्यूटीफुल डीपी मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आपका साथ देने के लिए। मोहन, रेखा, अंबिका, प्रमिला एंड सबीना साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। शालिनी जी का तो वो उनसे साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं और बहुत सारे दोस्त वो जो कि कह रहे हैं बस हमारा नाम मत लो, बस चलाते रहो गाने, चलाते रहो, हम मूड में हैं, सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो हम आपको भी यही कहेंगे, जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, कानों को बस एक एहसास देते रहिए, ये गाने आप सबके लिए।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

चतुर नार अम्म पकड़ कर रखेगा जी।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला का?
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:52 हो चुके हैं दोस्तों, ये था आपका रेट्रो रिदम, मैं थी आपके साथ पूनम। आपने सुना होगा आर एम टू रेडियो मस्ती में जो ये प्रोग्राम चल रहा था, इसमें हमने हर तरह के गाने आपके लिए चलाए, और ये जो लास्ट गाना था जिसमें इतने बड़े सिंगर, इसमें इतने बड़े एक्टर और सभी इतनी मस्ती में प्रोग्राम कर रहे थे, अपना गाना चला रहे थे। और कहते हैं ना, ये मूवी जब बनी थी तो उस समय सारे जने हंसते, कहते हैं हंसते गाते हुए पूरी शूटिंग की, और उस समय जब शूटिंग कर रहे थे तो सबने बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टर परेशान हो गया, उन्होंने कहा कि अगर हम ये गाना आपने चलाना है और ये गाना बनाना है, अगर हम ये डांस नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, तो ये गाना और ये पूरी मूवी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हमें करने दीजिए, हम जैसा चाहते हैं। तो हम भी आपको यही कहेंगे, अपने घर में आराम से इंजॉय कीजिए अपने गानों को, अपनी ज़िंदगी को। ब्यूटीफुल ज़िंदगी है, बहुत ही अच्छी है, ख़ास है आप सबके लिए, आपके अपनों के लिए। तो जहाँ पे भी बैठे हुए हैं बस स्माइल कीजिए बड़ी सी। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, पर मेरे बाद आपको साथ मिलेगा परी का, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके पसंद के गाने थे और नहीं चला पाए, क्योंकि हमारे पास भी तो 2 ही घंटे होते हैं, पर कोई बात नहीं, अपनी लिस्ट बनाते रहिए, एक एक करके हम सबके गाने चलाएंगे। इंजॉय कीजिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और बाय बाय आपको कहूँगी, और आपको ये कहूँगी आपकी शाम बहुत सुहानी हो, आपकी रात बहुत अच्छी हो। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribing to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से. रजनी, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. सबसे पहले ये खबर लोकतंत्र से जुड़ी. दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे बढ़ रहा है. गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में इसकी चर्चा की. हमारे देश को बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत रैंकिंग कुल 4 हैं और 172 देशों को लेकर जांच की गई. मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल. 50 मॉरिशन तीर्थयात्री कल रात भारत के लिए प्रस्थान हुए. वे चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं. इसके आयोजन में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड एवं प्रधानमंत्री दफ्तर का सहयोग प्राप्त है. क्या मॉरिशन संविधान भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षित करता है? जवाब है नहीं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कल प्रकाशित एक पोजीशन पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है. इसमें सुधार लाने की मांग भी की जा रही है. सरिता बुधू जी ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय सभा में पूर्वी भाषाओं का इस्तेमाल हो सके. आयोग का नेतृत्व सत्यजीत बुले कर रहे हैं और उन्होंने अभी चल रही बहसों के लिए स्पष्ट ढांचे की बात कही. विदेशी समाचारों में रुख सबसे पहले भारत. ओडिशा के मलकानगिरी में चक्रवात अर्नब ने तबाही मचाई है. लगातार वर्षा से ओडिशा का मलकानगिरी जिला पानी में डूब चुका. बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए. कुछ

0: ढांचे की बात कही। विदेशी समाचारों में रुख सबसे पहले भारत ओडिशा के मलकानगिरी में चक्रवात अर्नब ने तबाही मचाई है। लगातार वर्षा से ओडिशा का मलकानगिरी जिला पानी में डूब चुका। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। कुछ सेस्मोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि आज पूर्वी तुर्की इलाके में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखने वाली इस एजेंसी ने बताया कि भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। संक्षिप्त समाचार ये बस समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। नंबर 60 एवेन्यू दे जकारांडास कैट्रोबोर्ड में छियासठ साल के श्री राजेंद्रनाथ भवानीदीन, श्री राजेंद्रनाथ भवानीदीन जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर नंबर 60 एवेन्यू दे जकारांडास कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2:30 PM। ओल्ड स्कूल लेन कांजाबले में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागेन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कांजाबली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 3:30 PM। शोक मरुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies
4: Radio Musti
5: Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, हमने सोचा आज मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिकॉज आज है थर्सडे और थर्सडे की इतनी खुशी क्यों, बिकॉज कल तो होने वाला है फ्राइडे, उसके बाद वीकेंड। सो जैसे हमने कहा कि वी ऑल नीड दैट वन मोटिवेशन लाइफ में खुशी ढूंढने के लिए, और हमारे पास तो बहुत वजह है। अभी के लिए एक वजह और भी है, दैट हमारे जो लिसनर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो बस आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक। मैं हूँ परी आपके साथ इन योर बॉम्बे टॉकीज, जहाँ पर बी टाउन की अपडेट्स लेकर आते हैं आपके लिए, और साथ में कुछ ऐसे गाने जो आपके आफ्टरनून मूड को एकदम सेट कर दे। लंच के बाद हम भी जानते हैं दर आप थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई कब 4 बजेंगे, कब 5 बजेंगे और कब हम घर जाएंगे, लेकिन तब तक का समय आप हमारे साथ बिता सकते हैं, जहां पर एकदम मस्त रखेंगे आपके मूड को। टी कॉफी ब्रेक्स आप ले सकते हैं, अपना टी टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय सम वंडरफुल ट्रैक्स जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो हम जो अगला गाना लेकर आए हैं, इट्स अ स्पेशल वन, एंड ये है जावेद अली और श्वेता मोहन की आवाज़ों में। ये गाना खास इसीलिए है बिकॉज ये है फ्रॉम लेटेस्ट फिल्म राना बली। अब राना बली ये फिल्म खास क्यों है, क्योंकि रश्मिका मंदाना एंड विजय देवरकोंडा जो अब बन गए हैं एक कपल, यानी कि शादी हो गई है उनकी, और अब शादी के बाद ये है उनकी पहली फिल्म। सो रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा, उन्हीं की फिल्म राना बली, और उसी फिल्म का एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना उनके तमाम फैंस एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती जो इस वक्त साथ दे रहे हैं और लेकर आए हैं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज़।

0: रेडियो मस्ती
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मृणाल ठाकुर की उन्हीं की अदाकारी वाली अपकमिंग फिल्म पूजा मेरी जान इस अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले दिनेश विजन और अमर कौशिक द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म एक ड्रामा फिल्म है। ये दर्शकों को कुछ असहज सच का सामना कराने की कोशिश करती है और इसमें हुमा कुरैशी और विजय राज जैसे कलाकार भी है। 2 मिनट 18 सेकंड्स के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि पूजा यानी कि मृणाल ठाकुर अपने एक करीबी दोस्त के रोमांटिक प्रपोजल को ठुकरा देती है। इसके बाद वो खुदकुशी कर लेता है और इसके बाद परेशान करने वाली घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। सारे इल्जाम पूजा पर लगते हैं और उसी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म पूजा के साथ होने वाली कुछ परेशान करने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमेगी। ये रिजेक्शन, जुनून, असहमति और असल में क्या हुआ था जैसे मुद्दों पर सवाल उठाएगी। ट्रेलर में कोई आसान जवाब नहीं है, इसके बजाय ये बेचैनी, मकसद और नतीजों पर फोकस करता है। ट्रेलर में हुमा कुरैशी ने वकील सना का किरदार निभाया है, जो पूजा के साथ हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने और उससे जुड़े अलग अलग दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उनका किरदार फिल्म में सस्पेंस पैदा करता है। सना अलग अलग बयानों के बीच सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करती है, जबकि कहानी में सच का पता लगाना मुश्किल बनता रहता है। सो आपको बता दें, पूजा मेरी जान इस फिल्म का ऐलान 2022 में हुआ था, लेकिन लगभग 4 साल तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और अब 2 अक्टूबर 2026 को ये ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। नवजोत गुलाटी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म में चैतन्य विकास, विक्रम चौहान और राजेश जैस जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। सो 2 अक्टूबर यही तारीख है जब दृश्यम भी रिलीज होने वाली है, लेकिन दृश्यम रिलीज होने वाली है बड़े पर्दे पर यानी कि इन थिएटर्स। और ये जो फिल्म है पूजा मेरी जान, जो लग रही है एक ड्रामा फिल्म, और इसमें नजर आएंगी मृणाल ठाकुर एंड हुमा कुरैशी, साथ में कुछ और भी कलाकार है जो नजर आएंगे इन दया दमदार किरदार।
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel the Musty.

0: FM2 रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

सो वेल लेटेस्ट हो या फिर पुराने हर गाना यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सम सॉन्ग्स विद सम ट्विस्ट और ये है 90s लव मैशअप आपके लिए सो एवरीवन हु इज कनेक्टेड हमारे साथ कीप एंजॉयिंग गुड म्यूजिक ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती आपके लिए लेकर आए हैं योर बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक

0: RM2 Radio Musti.
1: और चलिए दोस्तों म्यूजिक के साथ आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी के लिए 2:50 हो गए हैं यहां पर डाविसन दाल माची से हमारा साथ दे रहे हैं सो वार्म वेलकम डाविसन आपका एंड विजया जी हम भी जानते हैं कि आप में भी बिल्कुल वो बॉलीवुड वाला कीड़ा है जो हमारे अंदर है और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल वंडरफुल मैसेजेस कहती है कि अफसाना बना के जिसके बारे में हमने कल बात की थी वो आपने देखा एंड यू प्रेफर द ओल्ड वर्जन मोर बिल्कुल सही बात है और जब भी तो हम कहते हैं कि जब कुछ नए गाने बनते हैं रीमिक्सेस बनते हैं सो दे हैव टू मेक श्योर कि जो पुराना फ्लेवर है वो बना रहे और जो लोगों के इमोशंस हैं वो हर्ट ना हो जाए बिकॉज वो ऑलरेडी क्लासिक्स होते हैं और फिर क्लासिक्स को टच करना ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है सभी के लिए यस गेटिंग मिक्स्ड रिव्यूज इसको लेकर एंड साथ ही साथ उड़ता तीर यस आयुष्मान खुराना उनकी नेक्स्ट रिलीज और यस ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जहां पर पाकिस्तानी स्पाई बनकर आते हैं हिंदुस्तान और फिर क्या कुछ होने वाला है ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और कहते हैं ना कि आजकल की जिंदगी में अगर थोड़ा सा फन पार्ट देखने को मिल जाए कुछ कॉमेडी देखने को मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी सी लाइट फील होती है सो वी डू होप दैट उड़ता तीर इट्स अ गुड वन और इसे हम देख पाएंगे जिसमें नजर आएंगे आयुष्मान खुराना सो ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच विजया जी फॉर द वंडरफुल वंडरफुल मैसेजेस एंड वंडरफुल अपडेट्स जो आप हमसे शेयर करती रहती हैं हमेशा एंड ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बस थोड़ी ही देर में बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर गुड म्यूजिक एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं दैट्स योर बॉबी टॉकीज़ आरएम2 रेडियो मस्ती

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें रजनी से, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे बढ़ रहा है। हमारे देश को कुछ बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, अतः आम रैंकिंग नहीं बल्कि श्रेणी के अंतर्गत रैंकिंग कुल मिलाकर 4 है। 172 देशों को लेकर जाँच की गई, मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल। कृषि उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के उच्चाधिकारी फिर से रिजवी में मिले। इससे 8 महीने पहले ही मैनेजमेंट की एक पहली बैठक लगाई गई थी। मंत्री अरविंद बुलेल अब से चाहते हैं कि कार्यक्रमों को अधिक ठोस तरीके से फॉलोअप हो, उद्देश्यों के साथ, इंडेक्स के साथ और मापे जाने वाले नतीजों के साथ। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट 2026-2027 के अंतर्गत ये कदम उठाए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे ब्लू इकोनॉमी पर टैक्स की तैयारी, नम इलाके, फॉरेस्ट्री और साथ में कृषि विकास तथा महासागर के साथ जुड़ी कई नई गतिविधियां। 50 मॉरिशन तीर्थयात्री कल रात भारत के लिए प्रस्थान हुए। वे चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। इसके आयोजन में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन, कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड और प्रधानमंत्री दफ्तर का सहयोग प्राप्त है। विदेश समाचारों में इथियोपिया की सरकार और उत्तरी तिग्रे इलाके पर अधिकार जमाने वाली पार्टी एक दूसरे पर पहले हमला शुरू करने के आरोप लगा रही हैं। इससे फिर से भारी लड़ाई होने का डर मंडरा रहा है। 2022 में तिग्रे में 2 वर्षीय लड़ाई खत्म हुई थी, लेकिन हालिया महीनों में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर शांति सौदे का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में ये शोक समाचार। ओल्ड स्कूल लेन कांजाबल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंसामी संजीवी जो राजन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके बेटे श्री आजागन संजीवी के घर ओल्ड स्कूल लेन कांजाबली से

0: उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांजाबल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शुक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU. More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies, Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: दो दिग्गज सिंगर्स यस दैट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग ये गाना था इन द वॉइसेस ऑफ सुखविंदर एंड शान फ्रॉम द फिल्म हैवान जिसमें नजर आए अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान वैसे तो हमने इन दोनों को कितनी सारी फिल्मों में देखा है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी उसके बाद नजर आए इन हैवान लेकिन ये फिल्म को जितना हाइप किया गया था बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए रंग यार इसी गाने के साथ वेलकम करते हैं हमारे सभी लिसनर्स का मैं हूं परी आपके साथ लेकर आई हूं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज बी टाउन की खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स जो आपके दिल को लुभा रहे हैं आपकी इस आफ्टरनून को और भी स्पेशल बना रहे हैं सो साथ दे रहे हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती एंड वी हैव वन मोर गाना जो आजकल हो रहा है काफी पॉपुलर

फ्रॉम द फिल्म हनुमान अंश. वेल, कभी हम भजन जैमिंग की बातें सुनते हैं, आजकल तो ये काफी चल रहा है, एंड दिस इज एक्चुअली अ भजन जिसपे आप जैम कर सकते हैं. दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म हनुमान अंश, साधु तिवारी की आवाजें हमारे सभी लिसनर्स के नाम. दैट्स पार्वती फॉर यू. एंजॉय दिस वन.

0: सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजंस एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
2: फील।

So well, ladies and gentlemen, यहाँ पर good music आपके लिए, that's your Bombay Talkies, साथ दे रहे हैं अभी इस वक्त अब्दुल एंड सायरा बानो, so beautiful गाना आपके नाम भी, साथ देने के लिए शुक्रिया for all the listeners जो हमारा साथ दे रहे हैं, खूबसूरत गाने आपके नाम हम लेकर आए हैं, गर्मा गर्म चाय कॉफी enjoy हो रही है और साथ में चॉकलेट पैनकेक्स as well, so enjoy your tea time, हमारे अपारू परिवार ऑफ होशनुआ आपका भी हम warm welcome कर रहे हैं on the waves of RM2 Radio Masti.

0: Such beautiful and mesmerizing gun, especially for you on R&2 Radio Musti. Check your time, it's already 4 p.m.
1: R&2 Radio Musti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: R&2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. The Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार रजनी के साथ. नमस्कार.
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. मॉरिशस के लिए फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये ने आज शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते मुलाकात की. इस पहली मुलाकात की बदौलत दोनों देशों के बीच व्याप्त बेहतरीन संबंधों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला. साथ में शिक्षा के क्षेत्र में नई सहयोग संभावनाओं के बारे में भी बातचीत की गई. शिक्षा मंत्री माहेंद्र गंगा प्रसाद ने पिछले मंगलवार 22 सितंबर को सिटीजन एडवाइस ब्यूरो दफ्तर में पेश आए हादसे के शिकार होने की बात का खंडन किया है. आज सुबह फिनिक्स स्थित शिक्षा मंत्रालय की सीट पर प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस खबर को फेक न्यूज बताया और उन्होंने इस झूठी खबर के लिए जिम्मेदार लोगों को डीप फेक मंगर्स की संज्ञा दी. मंत्री ने बताया कि वे मंगलवार के दिन चुनाव क्षेत्र नंबर 6 गांव पुतोदो में अपने मतदाताओं से नहीं मिलते. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले हफ्ते में CAB के लिए कोई दफ्तर नहीं. मंत्री माहेंद्र गंगा प्रसाद ने इस बात का भी ऐलान किया कि वे कानूनी कदम उठाने का इरादा रखते हैं. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से जब्त गाड़ियों में उपकरणों की चोरी की शिकायत किए जाने के बाद एक पुलिस जांच की जा रही है. FCC के वीडियो सर्वेलेंस कैमरा के दृश्यों को मोका CID द्वारा सुरक्षित रखा गया है और इन्हें देखा जाएगा. FCC के एक अफसर की तरफ से कल मोका पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज की गई कि शनिवार 19 सितंबर 2026 को 1 बजे और बुधवार 23 सितंबर 2026 को 11:30 के बीच जब्त 9 गाड़ियों में से कई रेडियो उपकरण एवं स्पीकर चुराए गए हैं. इन गाड़ियों को रेजवी में FCC के प्रांगण में रखा गया था. समझा जाता है कि गाड़ियों के अंदर जाने के लिए दरवाजों को तोड़ दिया गया. चोरी के सामानों की लागत के बारे में पता नहीं. याद रहे कि इलाके में वीडियो सर्वेलेंस कैमरा है. एक निजी सुरक्षा कंपनी के एक एजेंट 24 घंटे गश्त लगाते हैं और साथ ही FCC के द्वार पर ही पुलिसकर्मी तैनात है. दुनिया में जहां बहुत से देश लोकतंत्र की दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, वहीं मॉरिशस आगे हैं. गैर अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल आइडिया ने इस साल की अपनी रिपोर्ट में ये बात कही. 172 देशों को लेकर जांच की गई. मॉरिशस अभी भी टॉप 50 में शामिल. और विदेशी समाचारों में इथियोपिया की सरकार और उत्तरी टिग्रे इलाके पर अधिकार जमाने वाली पार्टी एक दूसरे पर पहले हमला शुरू करने के आरोप लगा रही हैं. इससे फिर से भारी लड़ाई होने का डर मंडरा रहा है. संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए. आपने ध्यान दिया. धन्यवाद. नमस्कार.
6: Your news on NBC Play and NBC.mu.
7: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2 सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25 सितंबर, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन OM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
2: महफिल महफिल ऐ शमा, फिरते हो कहां?
3: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: on Bollywood Station.
1: तो चलिए जी, टू ऑल दोस्ट हू आर ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, लेकिन हमारे गानों का खूब मजा ले लीजिए। जी हाँ, म्यूजिक ऑन, वॉल्यूम अप और वाइब्स जो है उसको कर दो रफ्तार पर, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू योर रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ हर गाना कहता है स्माइल करो, एंजॉय करो और लाइफ को फुल ऑन वॉल्यूम पे जियो। बिल्कुल जी, दिन चाहे कितना भी क्यों हेक्टिक रहा है, एकदम चिल करो। अब टाइम है कि सब कुछ साइड में रखें, क्योंकि रफ्तार वाइब्स जब आता है ना तो आपके मूड को एकदम रिफ्रेश कर देता है, बिल्कुल जैसे हम रिफ्रेश वाले बटन को दबा देते हैं। बेस्ट म्यूजिक, मस्त बातें और पॉजिटिव एनर्जी, ऑल पैक्ड इनटू वन ऑसम शो, एंड यू आर लॉक्ड इन टू योर रेडियो मस्ती किनिशा के साथ। और ये है रफ्तार वाइब्स म्यूजिक, एक्चुअली ये म्यूजिक का मूड, मस्ती का जो ग्रूव है हमेशा चलता ही रहता है रात के 7 बजे तक। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर, टू ऑल दोज हु आर स्टिल वर्किंग राइट नाउ, कुराज टू यू।

such a lovely track in the lovely voices of Shreya Ghoshal and Rajat Nagpal. जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने especially for you so that we can really pump up a little bit your mood. I know on the, it's only Thursday और काफी है थके हुए महसूस कर रहे हो. वैसे क्या गाना था ना, अगर आपका मूड अभी तक सेट नहीं हुआ है तो hopefully अब जो गाना लेकर आई हूँ वो उससे सुन के आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा. So to all those who are driving, drive carefully, आराम से गाड़ी चलाना, maintain distance while driving, जी हाँ दोस्तों, and yes, seat belt लगाना ना भूले, and do not use your mobile phone while driving, and कोई भी शेयर traffic regarding updates अगर आप हम तक पहुंचाना चाहोगे, so you can do it right now, right away on 5499-1294 पर 5499-1294. तो चलिए जी, get ready to groove on the next one, and that's going on my way. RM2.

सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे.
2: लड़की बड़ी अनजानी है.
3: Radio Masti, all the way.
4: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं.
3: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: OMG
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट
0: स्पोर्ट्स न्यूज
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
5: अच्छे अच्छे गानों का सिलेक्शन तो लेकर ही आते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मस्त जो हमारे स्पोर्ट्स न्यूज है वो आप लेकर आते हैं. अरविंद जी, गुड आफ्टरनून.
6: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्त लिसनर्स. वैसे गिनीशा, उस दिन आप इंतजार कर रहे थे कि
5: कुछ तो बोलेंगे.
6: हाँ, नहीं, उस दिन आपको बख्श दिया.
5: हाँ, क्योंकि मैं थकी हुई थी ना. हाँ, सोचा हाँ. कि ऑलरेडी थके हुए हैं. हाँ, उससे हाँ. क्या लड़े.
6: चलिए, मैंने सब कुछ नहीं कहूंगा, गणपति नाराज हो जाएंगे मुझसे.
5: बिल्कुल जी, आपने गणेश जी के नाम पे गिनीशा का नाम उसको बख्श दिया.
6: लेकिन अभी मैं आ रहा था तो हमारे एक कलीग से बात हो रही थी, तो मुझसे पूछ रहे थे, अरविंद ये 3 हफ्तों की जो छुट्टी है, ये इंटरनेशनल ब्रेक, ये पहले 2 हफ्ते हुआ करते थे, अब कैसे 3 हफ्ते हो गए. मैंने कहा देखो, अभी कुछ टीमें हैं, नाम नहीं लिया, कुछ टीमें हैं जिनका बहुत खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, खराब दिन चल रहे हैं, तो इसीलिए एफए ने, प्रीमियर लीग ने डिसाइड किया कि इनको 3 हफ्तों की छुट्टी दे दो, जाकर सुधर कर आए.
5: ताकि थोड़ा प्रैक्टिस भी करके आए.
6: हाँ, तो ये
5: शुद्धिकरण भी करके आए.
6: समझदारों को
5: नहीं, कोई बात नहीं. देखो, जितना मैंने आप हमेशा आपको यही एक बात समझाई है, जब आप पीछे हटते ना, बोलते हैं वो mieux reculer pour mieux sauter.
6: चलिए, लेकिन छुट्टी तो है, खिलाड़ियों के लिए छुट्टी नहीं, क्योंकि UEFA नेशंस लीग के लिए आज मैच खेले जा रहे हैं. कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं जब हम कहते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. एक्चुअली नेशंस लीग में आज सुबह में समझा रहा था, ग्रुप 1, 2, 3 होते हैं, लेकिन अलग अलग लीग भी होते हैं, लीग ए, लीग बी, लीग सी, लीग डी. अब जैसे लीग ए में जो यूरोप की जो महारथी उनके ऐसी टीमें हैं वो लोग होते हैं, जैसे नेदरलैंड्स, जर्मनी. ग्रुप ए, लीग ए ग्रुप टू में है, नेदरलैंड्स में नया कोच, जर्मनी में नया कोच. जर्मनी ने खासतौर पर यर्गन क्लॉप के लिए आज शुरुआत होगी. वर्ल्ड कप में जर्मनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए यर्गन क्लॉप को टीम दिया गया है और वो अपने हिसाब से टीम को चला रहा है. उसने टीम को 2 स्क्वाड में बांटा है, तो ये नेशंस लीग में 2-3 मैच जो खेले जाएंगे, अलग अलग टीम खेलेंगी जर्मनी के लिए, और कुछ बहुत से नौजवानों को मौका दिया जा रहे हैं. एवरेज इसमें 24-25 होने वाला है. नेदरलैंड्स जर्मनी नेशंस लीग में बहुत बार इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है और ज़्यादातर जर्मनी मैच जीत पाए हैं, लेकिन नेदरलैंड्स की टीम में दे आर मोर ऑर लेस द सेम. कुछ 1-2 खिलाड़ियों को लाया गया है, लेकिन द एसेंस जैसे वान डाइक, गाकपो, ये खेलेंगे, तो अनुभव के आधार पर आज नेदरलैंड्स का पल्ला थोड़ा भारी हो सकता है, पर जर्मनी इज जर्मनी, यू नेवर नो. और इसी ग्रुप में सर्बिया का मुकाबला ग्रीस से होगा. फिर ग्रुप अन्य ग्रुप में अंडोरा, माल्टा, लिएचटेनस्टाइन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इजराइल, कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ग्रुप 4 में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल, वेल्स. ये ग्रुप है, नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल, वेल्स, ये भी लीग ए में आता है, लीग ए ग्रुप 4. सो पोर्टुगल के लिए कहना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज हैं टीम में और उसने बताया कि अभी तक उसमें दम है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ताकि टीम को वो सपोर्ट दे सके, खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को वो एनकैडर कर सके. तो पोर्टुगल वेल्स जानना है कि अपने 1000 गोल स्कोर करने के लिए अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी तक 21 गोल चाहिए उसको. तो नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल, वेल्स, ये आज के मैच होंगे इन द UEFA नेशंस लीग. इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं. आज सुबह जापान ने उरुग्वे को 3-1 से हराया. इसमें मात्सुकी, शियोगाई और उएडा के गोल रहे. आरोयो ने 1 गोल स्कोर किया उरुग्वे के लिए. फिर साउथ कोरिया ने इक्वाडोर को 3-0 से हराया. चाइना की जीत हो रही है अभी 2-0 से मालदीव्स के खिलाफ. उज्बेकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा. फ्रेंडलीज में ही पालिस्टाइन और न्यूजीलैंड के बीच मैच ड्रॉ गया 2-2, और सोलोमन वानुआतु के बीच 3-3. अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स के लिए आज मैच है ग्रुप सी में ये एक तगड़ा मुकाबला होने वाला है आइवरी कोस्ट वर्सेस गाना ग्रुप ई में कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इक्वाटोरियल गिनिया सियेरा लियोन जिम्बाब्वे ग्रुप एफ में मोरिटानिया फिर नामीबिया फिर ग्रुप जी में नामीबिया कोंगो कमरून कोमोरो आइलैंड्स ग्रुप एच में लीबिया बोत्सवाना और चुनिजिया उगांडा ये आज के मैच हैं काफी मैच हैं और कल यूईएफए नेशंस लीग में इटली और जर्मनी बेल्जियम के बीच मुकाबला ये भी तगड़ा मैच होगा इसी ग्रुप में टर्की का मुकाबला फ्रांस से ये लीग ए में है इंग्लैंड का मैच होगा इस सैटरडे को इंग्लैंड अपने ग्रुप में है और वो भी लीग ए में लेकिन उसका सामना है स्पेन से ये वेम्बले में खेला जाएगा दैट मींस वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद स्पेन का ये पहला मैच होगा और इंग्लैंड के खिलाफ कल कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले जाएंगे सो स्पोर्ट्स की दुनिया कभी सोती नहीं बहुत कुछ है बताने के लिए इसीलिए चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो समय समय पर इन सब पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे क्रिकेट में इन दिनों जापान में एशियन गेम्स के तहत प्रिलिमिनरीज खेले जा रहे हैं मेंस कैटेगरी और जो इंडिया पाकिस्तान फिर श्रीलंका ये सब टीमें बांग्लादेश ये लोग क्वार्टर फाइनल में आएंगे लेकिन यह देखना है कि कौन सी वो टीमें क्वालिफाई होंगी ताकि इनसे खेल सके सो आज कुछ मैच

0: हैं इस एशियन गेम्स में, तो कल सुबह आपको ये नतीजे हम लोग देंगे एशियन गेम्स में, जहां पर भारतीय टीम को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। दे वन थ्रू दी वुमेन क्रिकेट टीम जो बहुत अच्छा खेल रही थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया, सो वेल डन। अब लड़के क्या करेंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुछ दिन से हम आपको बता रहे थे बीच सोकर के बारे में, मैच जो पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अब खबर है कि फ्राइडे को बीच सोकर खेला जाएगा यहाँ कोड्डो में। जिजुत्सु की बात हुई तो काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। आदिल डुकी मॉरिशस के लिए गोल्ड मेडल जीत पाया, ये अफ्रीकन चैंपियनशिप है जो अल्जीरिया में लगा, फुल कॉन्टैक्ट में वो चैंपियन बना। फिर एमी वॉटरसन भी जीत पाई गोल्ड मेडल, और बीचोक वाला मैच आपको बता दें अंगोला के खिलाफ है ये फ्राइडे को, तो कल जाकर आप लोग मॉरिशस की टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं। और मॉरिशस के चांसेस अच्छे हैं बीच सोकर में। सो दैट्स इट, आपको और खबरें देंगे, बहुत मैच हैं, कल सुबह सुनिएगा जरूर रिजल्ट्स।
1: थैंक यू सो मच अरविंद जी,
0: वेलकम।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
4: RM2 listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए for an exciting radio shopping session on RM2. ढूंढ रहे हैं वो perfect sofa, एक stylish dining set, elegant bedroom furniture, or simply want to give your home a fresh new look? So mark your calendar and don't miss radio shopping. एक घंटे में ढेरों shopping ideas. Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in.
5: انا بحر عليا وانت يا هدا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلب وزي

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग। रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the

बिल्कुल, जितने प्यार से हम आपको आवाज दे रहे हैं तो जरूर हमें पता है कि आप आते रहते हो हमारा साथ देने के लिए. एंड दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स हैपनिंग ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती विद मी गिनिशा. 5:18 हो चुके हैं और आज है थर्सडे 24th of September 2026. हां जी, डू यू नो समवन सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे? तो चलिए जी, उनको विश करना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे ऑन रेडियो मस्ती. और अगला गाना हमारी तरफ से जस्ट टू सेलिब्रेट देम. हियर वी गो, एंजॉय.

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

0: your number one Bollywood station.
1: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
2: 5:36 हो चुके हैं. येस, इट्स टाइम टू गिव यू सम लेटेस्ट फैशन टिप्स ताकि आप टिप टॉप लगे. और वैसे आज थर्सडे यानी कि कल फ्राइडे, तो फ्राइडे ऑफिस फैशन टिप्स हम दे ही सकते हैं. फ्राइडे है बॉस, ऑफ कोर्स. सो वैसे ऑफिस वेयर थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा रिलैक्स और फुल स्टाइलिश होना चाहिए. वे स्मार्ट कैजुअल लुक यानी कि एक नाइस शर्ट या क्लासी टॉप के साथ जीन्स सिंपल कम्फर्टेबल और स्टाइलिश भी दिखेगा. कलर्स में थोड़ा फ्रेशनेस यानी कि फ्राइडे के लिए कल पेस्टल शेड्स व्हाइट, बेज, लाइट ब्लू या सॉफ्ट पिंक ट्राई करो. और लेडीज जो है मिडी ड्रेस इज ऑलवेज अ वाइब, कंफर्टेबल ड्रेस विद फ्लैट्स या लो हील्स एफर्टलेस बट एलिगेंट दिखोगे. और गाइस पोलो या चनोस या एजी क्लीन और परफेक्टली फ्राइडे रेडी हो सकते हैं. ब्लेजर का मैजिक सिंपल आउटफिट के ऊपर एक लाइट वेट ब्लेजर डाल दो, लुक इंस्टेंटली आपका पॉलिश लगेगा.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.

0: आपको गाने अच्छे लग रहे हैं. यस आई नो आई गॉट यू डिफरेंट गानों का सिलेक्शन जस्ट टू पंप अप अ लिटिल बिट सबका मूड एंड आपका वाइब जो है एकदम मस्त टॉप पे लेकर आए. 5499-1294 पर चलिए जी. आई गॉट योर डेडिकेशंस एंड वी हैव अनीता फ्रॉम फ्लैग शीज कुकिंग एंड एंजॉयिंग दिस नाइस सॉन्ग. अच्छी बात है. एंड कुराज टू यू माई ब्यूटिफुल. हेलो मेरी जान. आए हाय क्या बात है. कैसे हो जाना मेरी जाना. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं स्वीट बातें कर रही हूँ और आप हमें सुनते चले जा रहे हैं और अच्छी बात है. सो कुराज टू यू माई स्वीट हार्ट. और अगला गाना जो है आपकी बेटी रीमा जनीता शेष्टा अंशिनी सिल्विया युवी कृषि शिव सुगन्ना परिवार के लिए जो फ्लैग से हमारा साथ दे रही है. हाय माई गिनू डार्लिंग. आए हाय मर जावा गुरखा के इतना प्यार क्यों बरसा रहे मेरी जान. बिल्कुल जी एक गाना आपके लिए जरूर प्ले कर सकती हूँ और आप हो हमारी प्यारी प्यारी जिसने अपना नाम जो है नहीं लिखा. आई गेस रेखा बर भारद्वाज जी. अच्छा आई गेस आई डोंट नो आपने अपना मैसेज साइन नहीं किया. कोई बात नहीं. एंड एक्चुअली आई डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली फॉर यू चाचा चेतानंद एंड होल रामहुता फैमिली विशिंग एन नेफ्यू निरेश ऑफ बेलवी मुगैला हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम बारा फुकीरा अजूडिया मर्टन एंड फैमिलीज जो हैं स्पेशली अनिष्का आयान और आइलान फ्रॉम फ्रांस दे आर विशिंग यू लूड्स ऑफ हैप्पीनेस माय डियर. तो चलिए जी टू ऑल दोस्त जो हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. फिलहाल के लिए जस्ट गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्रैक जो हम लेकर आए हैं फ्रॉम द मूवी सुपरस्टार से 2008 में रिलीज हुई थी. बस स्टिल आई कैन फील द वाइब्स सो लेट्स ग्रूव टुगेदर ऑन इट ऑन आवर टू रेडियो मस्ती.
1: सुनते रहो.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हम

0: एनबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
3: कहता है बाबू।
0: रविवार 27 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।
4: OM2
5: रेडियो मस्ती।
6: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le spicy chicken fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local, du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout trois façons d'en profiter en burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
7: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
6: Le nouveau spicy chicken fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
4: RM2
5: Radio Musty.

0: खूबसूरत गाने लेकर आते हैं हम एवरी आफ्टरनून 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन योर आफ्टर वाइब्स आपका साथ देने के लिए. इट्स मी गिनेशा गाना भी है रात के 7 ओ क्लॉक तक. तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहना गुड गुड म्यूजिक. और फिलहाल के लिए आई जस्ट रिमाइंड यू टू चेक योर टाइम बिकॉज इट्स ऑलरेडी हियर 6 PM. और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद समाचार के बाद.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
3: Radio Musti.
1: North.

0: की सिलेक्ट कमेटी के सामने पुश्तैनी भाषाओं के समर्थकों सहित सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस सिस्लोये से मुलाकात की। दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा हुई और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर। कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच सिखाने के नए तरीकों पर इंस्टीट्यूट फ्रांसिस डी मॉरिस की दो दिनों की कार्यशाला आयोजित। प्रतिभागियों ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के तरीकों पर काम किया। विदेश समाचारों में भारत के ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत। दिल्ली से मुहब जा रही बस में करीब 45 यात्री सवार, पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन पहुंचने पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। दोनों देशों की 3 दिनों की शिखर वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिका ने व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ाने की घोषणा की। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। बरसात का मौसम करीब है, बाढ़ का खतरा कम करने के लिए नालों और नदियों की सफाई कहां तक पहुंची है, इसी पर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज पोटलिस नगर पालिका में बैठक लगाई। बैठक में जरूरी मरम्मत के कामों के साथ साथ नालों की सफाई के लिए दी गई राशि के इस्तेमाल पर भी बात हुई। भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रियोल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कमांड प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल कराने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। दशकों पुराने कूटनीतिक संबंध और सहयोग के नए रास्ते, प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने आज दोपहर बाद मॉरिशस में फ्रांस के नए राष्ट्रदूत अलेक्सिस लोये से मुलाकात की। अपनी पहली मुलाकात में दोनों महानुभावों ने दोनों देशों के करीबी संबंधों पर चर्चा की, खास पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं देखी गई।
1: मॉरिशस में फ्रांस के राजदूत का पद संभालने के 2 सप्ताह से ही कम समय के बाद अलेक्सी लोये ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। इस दौरान अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: Nos deux pays partagent une relation que je qualifierais de singulière, tant elle est riche dans plein de domaines, hein, que ce soit le domaine économique, on a parlé un peu du domaine de l'éducation aussi, où j'ai eu l'occasion de participer au lancement d'un programme d'implantation de filières d'excellence bilingue dans 24 établissements scolaires, en fait, à Maurice et à Rodrigue, en présence du ministre de l'Éducation. Donc c'est un sujet très très fort aussi, en domaine culturel. C'était l'occasion... Pour le Premier ministre et moi d'aborder les différentes facettes de cette relation extrêmement riche et qui va continuer à s'enrichir.
1: मॉरिशस और फ्रांस की बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान कानून के आधार पर किए जाने का मुद्दा भी इस मुलाकात में चर्चा के केंद्र में रहा।
0: इससे पहले इसकी चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रसभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग आज दोपहर बाद हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल करने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। रिपोर्ट यचना मिश्रा।
3: हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि भोजपुरी मॉरिशस की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का

0: एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
1: Nous d'un pays multiracial, mauricien, la langue principale c'est créole qui nous compte, mais après créole c'est bhojpuri. Dans la campagne surtout, beaucoup de monde cause bhojpuri. Beaucoup de communautés causent bhojpuri. Si nous acceptons bhojpuri là, alors nous avons un vieux du monde capable de comprendre ce qui peut passer dans le Parlement. Nous pouvons laisser ben, l'autorité travaille de toute l'indépendance qui nous a pu faire pression et nous pouvons faire une demande.
0: संगठन ने सरकार से अपील की कि इस मांग पर विचार किया जाए और राष्ट्रसभा में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं। एक ही कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों को फ्रेंच कैसे सिखाएं? इसी पर लेस्टिचे फ्रांसे दे मोरिस की ओर से दो दिनों की शिक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए पढ़ाने के लिए नए तरीकों पर काम किया। इंडियन ऑयल के साथ नई ईंधन आपूर्ति समझौते के बाद पहली खेप मॉरिशस पहुंच गई है। इसे लेकर जहाज थॉमस प्लैंडिड बुधवार को पोर्टलिस बंदरगाह पहुंचा। व्यापार मंत्री भी खेप के आगमन पर वहां मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट।
2: 10 दिनों की यात्रा के बाद एमएस टॉम स्प्लेंडिड मॉरिशस पहुंचा। इसके नमूने पहले ही जांच के लिए ले लिए गए हैं। गुणवत्ता की पुष्टि होते ही इस खेप को उतारा जाएगा और बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता मॉरिशस के लिए ईंधन की आपूर्ति को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यापार मंत्री माइकल सिकियन कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में मॉरिशस के लिए दो अच्छे मुद्दे हैं। पहला, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है हम फिर से समझौता बातचीत शुरू कर सकते हैं, 30 दिनों की नोटिस देनी है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के 10 महीने बाद हम कह सकते हैं कि दाम ठीक नहीं है, फिर से बातचीत करनी
3: चाहिए।
2: अगर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो फिलिंग स्टेशन पर इसकी कीमत का सवाल अब भी बना हुआ है। मौजूदा बाजार में बिक रही पिछली खेप के आधार पर किए गए हिसाब से पेट्रोल की कीमत पहले ही 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल की कीमत करीब 75 रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। वहीं 22 सितंबर को दर्ज अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर ये लागत और बढ़ सकती है। प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट की प्रक्रिया 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को रोकती है और 10% से कम की गिरावट को रोकती है। एक समय 60% तक ही रुके थे, क्योंकि जब 36% से बढ़ा था और हम 10% बढ़ा रहे थे तब हम 26% के फासले का सामना कर रहे थे। जमा करने वाले सभी टैक्स वित्त मंत्रालय मॉरिशस की जनता को वापस करता है। पेट्रोल और डीजल का प्रति लीटर 7.20 रुपए जमा होता है और हम सब्सिडी देते हैं। अगर ये 7.20 रुपए हटा देते हैं तब राशन का चावल 56 रुपए से बढ़कर कम से कम 150 रुपए हो जाएगा।
3: Et diesel qui collecté par litre, 7.20 par litre, et nous donne subside. Vous connaissez nous tiens ça 7.20 là qui arrivait? Diri ration pour sortir 56 rupees pour vin au moins 150 rupees.
2: इंडियन ऑयल के साथ हुआ ये समझौता 5 साल की अवधि के लिए ईंधन की आपूर्ति को कवर करता है। वहीं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जरूरी हैवी फ्यूल ऑयल की आपूर्ति के लिए सहारा एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड ही मौजूदा सप्लायर हैं।
0: सुर्खियों हम इसका उल्लेख कर रहे थे, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रसभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही है। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रेओल मॉरिशियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। मीकान पुनापा नायकन, गीता सुनारान।
2: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट पिछले अगस्त के अंत में मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट की सरिता बुधू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद तैयार की गई। उनका कहना था कि मॉरिशस की पूर्वजों से चली आ रही

0: भाषाओं को राष्ट्रीय सभा में ख्योल मोगुसियां को शामिल करने के लिए बनाए गए सिलेक्ट कमेटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है। अपने पोजीशन पेपर में आयोग ने सबसे पहले कहा कि धारा 16 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने सिफारिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही क्रेओल मोगुसियां से जुड़े काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सजीत बुलेल कहते हैं,
1: Mauricien, citoyen, du monde qui promouvoir que ce soit ma langue ancestrale ou autre, devine qu'un sens déposé. Parce que c'est celle corridor de représentation qui est là. À part de ça, pas pour une seconde. Donc, pour nous, l'emphase, c'est interprète le terms of reference de façon bien élargie. Parce que pour beaucoup de monde, je peux penser que, comment dire, et un risque de marginaliser ma langue ancestrale, un contre l'autre. Ça a l'impression là pour dissiper quand nous considérons cette représentation. C'est moi nous peut dire aussi que de faire pas langage vient un outil communal, pas rentre dans sa la trappe là. Langage c'est nos héritages nationaux.
0: औपचारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि 89% आबादी ख्योल मोगुसियां बोलती हैं, 8.6% लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, 5.6% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि केवल 1.3% लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जो संसद की आधिकारिक भाषा है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान की धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जा सके।
1: À nos décideurs politiques, l'État, vienne avec un amendement du section 16, que ce soit maintenant ou que ce soit après un exercice de la Constitution Review Commission, mais la section 16 vient révisiter pour qui le terme langage fait partie d'une demande prohibition contre toute forme de discrimination.
0: इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से ये भी जांच करने को कहा है कि संसद में अंग्रेजी के इस्तेमाल और फ्रेंच के इस्तेमाल की अनुमति संविधान की धारा 1 के अनुरूप है या नहीं।
2: मौसम की चेतावनी मिले तो लोगों को ये भी पता हो कि खतरा कहाँ है और क्या करना है। इसी दिशा में मॉरिशस मौसम विभाग ने 2027 से 2031 तक की अपनी योजना पेश की है। इसमें मौसम के संभावित असर को समझाकर चेतावनी देना और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करना शामिल है। मकसद है खतरे के समय सभी मिलकर जल्दी कदम उठाएं। शेजा जुमन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
3: भारी वर्षा, अचानक बाढ़, सूखा और समुद्र में जलस्तर का बढ़ना, इन खतरों के चलते मौसम विज्ञान केंद्र अब से केवल निगरानी और पूर्वानुमान तक सीमित नहीं रह सकता है। वाक्वा के मौसम विज्ञान केंद्र से देश के लिए तैयारी और चेतावनी में एक भूमिका निभाने की मांग की जा रही है। बुधवार को सिविल सोसाइटी के ऑपरेटरों को पेश किए गए 2027-2031 की स्ट्रेटेजिक प्लान के सुझावों में से ये एक है।
4: To national climate and resilience intelligence.
3: दस्तावेजों में ऑब्जर्वेशंस में सुधार लाने के वास्ते डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्वानुमान और खासकर जानकारियों के प्रसारण की एक नई प्रणाली को लेकर
5: Dans sa prochaine 5 ans là, nous pertinent qu'il peut transformer météo, nos systèmes alertes pour changer, nos façons nous donne nos ban services climatiques pour changer. Par exemple, vous gagnez alerte le jeu de téléphone. Les pas pour this text, peut-être les pour pictorial. Nous appelons ça un impact matrix. Alors ça impact matrix, ça les pour finir dire si qui intensité ça système là. Si peut-être pollue peut gagner gros la pluie, vous trouvez pollue les pour en rouge, vous finissez qu'on est ok et dans un grand sens qui pollue pour gagner la pluie. Donc tout ça là, nous pour améliorer, nous peut penser que d'ici 2 ans.
3: इसके अलावा इस योजना को अमल में लाए जाने के अंतर्गत विशेषज्ञों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए साझेदारी के विकास की बात भी शामिल और साथ में फाइनेंसिंग की सुविधा प्राप्त कराने की बात भी।
6: De connaître le temps et le climat, mais de connaître vraiment les impacts pour les différents secteurs. Et donc, il faut travailler ensemble pour connaître qu'est-ce que

0: qu'est-ce que les services météo doivent les fournir.
1: लेकिन एक चेतावनी काफी नहीं, खतरों का पता लगाना और साथ में जनता को तैयार भी करना है, संस्थाओं के साथ मिलकर कदम उठाना है ताकि हर एक को पता चले कि समय पर किस तरह के जरूरी कदम उठाने हैं।
2: Augmenter cette notion de early warning et aussi augmenter cette notion de community based early warning, ce sera très important parce que la communauté aussi doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire quand il y a une catastrophe.
3: Avec cette stratégie plan là, nous pourrons rejoindre les stakeholders et là, en ce faisant, nous connaissons qui bonnes précautions besoin prendre.
1: इसके अतिरिक्त स्ट्रेटेजिक प्लान में उपकरणों का आधुनिकीकरण और मानव संसाधनों में निवेश भी सम्मिलित। सरकारी नौकरी के समय निजी काम नहीं, सरकारी कर्मचारियों की निजी पेशेवर गतिविधियों पर अगस्त में जारी सूचना को लेकर सिविल सर्विस मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों के कोड ऑफ कंडक्ट में पहले से ही ये नियम मौजूद है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कर्मचारियों को अपने काम और ड्यूटी के समय का पालन करने की याद दिलाई गई। सीनियर परमानेंट सेक्रेटरी देवेंद्र गोपाल और सिविल सर्विस मंत्री राज पेंचा को सुनती हैं।
4: Si un fonctionnaire a envie de faire un détail private work, suivre procédure. What are the procedures? The business guy approves the accounting officer. It must not be within working hours. Il n'est pas mis en conflit de travail. Qui fait une retire sa réminde là? Parce qu'il y a une lettre depuis un boss person qui nous a attiré l'attention pour éviter un abus.
5: Tous les temps, lit comme ça. Au contraire, on connaît quand ça finit dilué, il n'y a plus pire que ça avant. Avant, dire comme ça, une fois qu'on est un officier du gouvernement, ou à plein temps. Ça veut dire que je peux dire qu'on ne fait rien. Mais éventuellement, finalement, une requête de la part de l'Union et quelques représentants du service public donnent sa permission-là. La LAN prend consultation avec PIRB et PSC. Le problème là, pas nous qui nous créons. Complète là, pas nous qui nous créons depuis une bonne personne ou bien depuis une autre institution. Il faut déjà venir contre nous. Il faut dire quelques personnes qui souffrent de ça. Ils n'allent vers une bonne personne. Une bonne personne, ils me disent, trouvent de l'obligation de dire nous qui pouvons faire.
1: मन में श्रद्धा और चार धाम के दर्शन की अभिलाषा लिए मॉरिशस के 50 श्रद्धालु कल भारत के लिए रवाना हुए। वे चार धाम यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा का आयोजन मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कला और संस्कृति मंत्रालय एयरपोर्ट्स ऑफ मॉरिशस कपड़े लिमिटेड और प्रधानमंत्री दफ्तर के सहयोग से किया। याचना मिश्रा और पूजा सुकालू की ये रिपोर्ट पेश है। चार धाम यात्रा जिसे चार पवित्र धाम की यात्रा के रूप में जाना जाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से मिलकर बनी है। इसे हिंदुओं की सबसे पवित्र आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। मॉरिशस के इन निवासियों के लिए ये तीर्थ यात्रा विशेष महत्व रखती है।
6: ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम महादेव सीधे से संपर्क रख सकते हैं और महादेव का आशीर्वाद ले सकते हैं।
7: प्लीज़ प्लस इंटरेसेंट स्पिरिचुअल वंस इन अ लाइफ टाइम नो इंपोर्टेंट कि नो आल फेयर एन रिलीजियस ट्रिप
8: Il y a tout le monde là-bas, il est un petit peu frais, un petit peu heureux. Kedarnath, ce beauté, c'est la nature, c'est là, ça qui m'a nourri à découvrir.
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की पहल पर आयोजित ये इस वर्ष की तीसरी टोली है।
9: Nous gagnons beaucoup d'aide, nous commençons par Air Mauritius. Nous gagnons un tarif vraiment spécial. Et aussi le ministère. La santé, tout ça, ban, bhai behen qui pial yatra, zo gain un vaccin cadeau. L'équipe qui pial les aujourd'hui, zo pe gain facilité hélicoptère. Pour le Kedarnath, et ça nous dit un grand merci, l'honorabilité Samfol qui finit de l'un grand coup de main, et aussi, sans oublier, l'ambassade l'aide.
1: Ye tirth yatri agle 8 octobre ko swadesh lautenge. और विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, उनमें भारत के ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से महोबा जा रही बस में करीब 35

0: यात्री सवार थे। कुछ यात्रियों का कहना है कि आग लगने से पहले उन्होंने चालक को जलने की गंध के बारे में बताया था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आशा गोविंदमन।
1: भारत के उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस पर बुधवार देर रात एक चलती बस में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। बस दिल्ली से महोबा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। आग बस के अगले हिस्से से शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में फैल गई। धुएं के बीच यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की। बचाव दल ने आग पर काबू पाया और कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों का इलाज चल रहा है। एक यात्री की शिकायत के अनुसार आग लगने से पहले बस में जलने की गंध आई थी। यात्रियों ने चालक और कंडक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन बस तुरंत नहीं रोकी गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। आग लगने की सही वजह की जांच जारी है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है।
0: वेबसाइट ने जानकारी देने से रोका, लेकिन एआई एजेंट ने दूसरा रास्ता खोजा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के अनुसार ओपन एआई का ये एजेंट स्वास्थ्य आंकड़ों वाली सरकारी वेबसाइट की कुछ गैर सार्वजनिक फाइलों तक बिना अनुमति पहुंच गया। प्रधानमंत्री एंटोनियो अल्बनीज ने इसे अस्वीकार्य बताया। सरकार का कहना है कि अब तक किसी व्यक्ति की निजी स्वास्थ्य जानकारी तक पहुँचने का प्रमाण नहीं मिला है। घटना की जाँच जारी है। अमेरिका और चीन के बीच 3 दिनों की शिखर वार्ता शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाशिंगटन के पास हवाई अड्डे पर खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। लाल कालीन और सैन्य सम्मान के साथ हुए इस स्वागत के बाद दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, टेक्निक और ताइवान जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बनी अस्थायी सहमति 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

0: मौसम संबंधी जानकारियां इस रिपोर्ट में।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 15 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 24 से 26 और साहिली इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद मौसम सुहाना रहेगा। उत्तर पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बादल घिर आएंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। आज रात के लिए दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:57 पर सूरज निकलेगा।

गीता सुनारान की मौसम संबंधी रिपोर्ट के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हम कहेंगे अपने तकनीकी सहयोगियों लुडोविक और ठावनी को। कुछ ही समय में शोक समाचार। Avenue des Colombes médecine camp de masque mais Avenue des Colombes médecine camp de masque mais 62 साल के 62 years old की श्रीमती गायत्री जोन की पैदाशी नाम द्वाका जो गायत्री नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री दानन जोन की के घर Avenue des Colombes médecine camp de masque से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए médecine camp de masque की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन at 1 p.m. Basai Road Catterbone में 44 साल के 44 years old के श्री अश्विन नक्चेदी जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है कल दिन के 1 बजे उनके घर बासै रोड कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमरो एट 1 p.m. Le Grand Branch Road, Grand Bois,

63 साल के 63 years old की श्री आनंद कुमार गजाधर, श्री आनंद कुमार गजाधर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घर लेखों ब्रांच रोड खौबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। देन ऑन क्लास रोड गुडलैंड्स में 87 साल के 87 years old की श्रीमती दीनमत्या सितुहल पैदाशी नाम बिहारी जो चांदो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर देनांकलो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। महात्मा गांधी रोड पुत्र दो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे 71 वर्ष की 71 years old की श्रीमती प्रतिमा रामास्वामी पैदाशी नाम गंडौरी जो अपाप्रत नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री शैलेन रामास्वामी के घर महात्मा गांधी रोड पुथुदो आमलेट में विलेज हॉल के पीछे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। आपाजूलेन बासें कैट्रोबोर्ड में 87 साल के 87 years old की श्रीमती तुलसमा बप्पामा पैदाशी नाम बसवाना जो उमा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम साढ़े चार बजे उनके घर आपाजुलेन बासें कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: News on NBC Play and NBC.mu.
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September. दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे

0: स्टूडियो की घड़ी में 6:33 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. वेलकम ऑन बोर्ड. दैट्स द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो योर अफ्टार वाइब्स, जहां पे फिल्मी राइड्स पे लेके जाते ही तो हैं, लेकिन अच्छे म्यूजिक हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए. टू दोज जो ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं काम से, ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, सो कुहाज टू यू. एंड टू दोज जो अभी भी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव केयरफुली एंड कीप ऑन एंजॉइंग द गुड म्यूजिक.
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकी।
1: अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। हमारा खेल पसंद नहीं आया। जिस बहादुरी से लड़े हो बस अब उसी बहादुरी से मरने के लिए तैयार हो जाओ।
2: क्या करें भाभी, आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें? ये शाकल है भाभी, शाकल।
3: दोस्तों से प्यार किया।
0: मंगलवार 22 सितंबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म शान 1980s की मूवी अमिताभ बच्चन और शशि कपूर पर फिल्माई गई शान।

एकदम सही बात है दोस्तों, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, इसलिए बिन बोले बिन कहे बहुत कुछ ये आंखें पढ़ जाती हैं और सुन भी लेती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि यह जो आपकी जुबां बयां नहीं कर पाती हैं वो आपकी आंखें कह जाती हैं, और इसीलिए कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि किसी के मन में कुछ छुपा हुआ है तो उनके दिल में उतर कर देखिए और उनकी आंखों में झांक कर देखिए, आपको खुद ब खुद बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और हमेशा आप ये याद रखिएगा कि हर किसी की आंखें एक खुली किताब की तरह है, जितना आप इसमें झांक कर देखेंगे उतना ही आपको उनकी कहानी ज़रूर पढ़ने को मिलेगी। सो चलिए, यहाँ पर हर किसी की कहानी अपने तरीके से बहुत ही प्यारी होती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं, और इस छोटी सी आपकी कहानी में और भी प्यार ऐड करने के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। अभी के लिए तो रात्रि के 7:05 हो चुके हैं। विशिंग यू लवली लवली गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपके मैसेजेस पढ़ने के बाद देखने के बाद तो हमेशा हमेशा हम कहते हैं दैट वी फील एक्स्ट्रा स्पेशल, और मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, एंड वी रियली फील गुड, और यही फील गुड वाला फैक्टर आपको भी देना है एंड हमारे गाने के जरिए व्हाट कुड बी बेटर। और कहते हैं ना कि म्यूजिक इज़ द बेस्ट थेरेपी, तो एक अच्छा थेरेपी होने के साथ साथ एक अच्छा कंपेनियन भी है। तो अगर आपको लगता है कि अभी के लिए इट्स अ स्लो इवनिंग और आपके साथ कोई नहीं है, तो चलिए अपने आप की कंपनी को पूरा पूरा इसका फ़ायदा उठाइए। कभी कभी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है टू एंजॉय योर गुड कंपनी, एंड कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि आप चारों तरफ के शोर शराबे को म्यूट करके आप खुद के दिल की आवाज़ को सुने। सो चलिए, आई जस्ट होप कि आज शाम आप वही करेंगे एंड आप प्यार को महसूस करेंगे और प्यार से हमें मैसेज

0: भी भेजेंगे. सो चलिए आपकी मैसेजेस का हम इंतजार करेंगे ऑन 5499 1294 इज द नंबर. तो चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं. एंड अभी थोड़ी देर पहले आप हासिल से ये ब्यूटीफुल गाना सुन रहे थे एंड सो सॉरी एंड कि आपको ये कॉन्वीनियंस से गुजरना पड़ा. एंड कभी कभी क्या होता है ना, टेक्निकल इशू की वजह से गाने रुक जाते हैं अचानक से. सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. कोई बात नहीं, विल कीप द सॉन्ग गोइंग ऑन टिल 9 PM जहां पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: मेरे साथ है, मेरे पास है और बस प्यार का साया साथ साथ चलता है ना, तो अपने आप लाइफ में सब कुछ चीज़ें टेंड टू फॉल इनटू प्लेसेस। चलिए यहाँ पर आपके कुछ मैसेजेस हैं जो हम ज़रूर पढ़ेंगे एंड यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर यलेश शाम। एक्चुअली आपने गिनीशा के शो में मैसेज भेजा था और ये मैसेज अनरीड ऑप्शन पे था, तो हमने सोचा चलो आपका मैसेज भी पढ़ लेते हैं। सो यलेश शाम अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड आपको गाना सुनना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर गहरा हुआ एंड अगर पॉसिबल हुआ तो वील ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। बिग किसेस टू ईच एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच यलेश एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। वी हैव प्रीति फ्रॉम अमोही, नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर योर फैमिली एंड to all RM2 Radio Masti team। चार दिनों की लंबी जुदाई, इमरान हाशमी का गाना। ये गाना तो हमने कल चलाया था, आज फिर से चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रीति हमारा साथ देने के लिए। नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर रिखाई फैमिली एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक और मैसेज यहाँ पर अनरीड है, तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं। एंड आपने गिनीशा को बहुत बहुत सारा प्यार भेजा है, थैंक यू सो मच। और इनको शो पे ही एक्चुअली आपका मैसेज आया था एंड आप को थैंक यू सो मच मनीषा आपके इस मैसेज के लिए। नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशली फॉर यू एंड आपका ये मैसेज गिनीशा तक ज़रूर हम पहुँचाएँगे। तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू दिल से आपको कि आप लोग इतना प्यार बरसाते हैं एंड आई जस्ट होप कि ये सारे प्यार भरे गाने आप ज़रूर सुन रहे होंगे और दिल भी वैसा ही हो रहा है प्यार भरा। तो चलिए कीप सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन 5499-1294। आपके मैसेजेस जब भी आते रहेंगे तब हम आपके पैगाम को अपनों के नाम भेजते रहेंगे, वो भी बहुत ही प्यार से।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: ट्रस्ट मी गाइस, अगर मैजिक का कोई डेफिनेशन होता तो मैं इस गाने को ज़रूर रिफ़र करती, बिकॉज ये गाना नहीं लगता है. इट डजेंट लुक लाइक म्यूज़िक, इट डजेंट फील लाइक म्यूज़िक, इट फील्स लाइक मैजिक. और ये गाना सुनते ही ऐसा लगता है कि हम किसी फेरी टेल में पहुंच चुके हैं और कोई बस बाहें पसारे हमारे लिए ये गाना गा रहा है. कितना अच्छा होता ना. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हकीकत में भी इन सपनों को साकार करें. अगर आपको लगता है कि इससे प्यार बढ़ता है, एक्सप्रेस करने से प्यार बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स आप करिए ना. अपने साइड से आप उनको मैसेज भेजिए जिनको आप याद कर रहे हैं, एंड डू लेट देम नो कि आप किस हद तक उनको याद कर रहे हैं. और आपको हमेशा स्पेशल ओकेजन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. ट्रस्ट मी, अगर आपने ये रोज़ रोज़ करना शुरू कर दिया तो यू वोंट वेट फॉर वैलेंटाइंस डे. वैलेंटाइंस डे आकर चला जाता है. और क्या कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक स्पेशल ओकेजन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वैलेंटाइंस और एज ऑर्डिनरी एज अदर डेज, क्योंकि बाकी दिन को भी वो लोग अपना प्यार जताने से कतराते नहीं हैं. तो चलिए, आई जस्ट होप कि आप भी उनमें से एक हैं जहां पर हमेशा बार बार अपने प्यार को जताते रहते हैं. तो चलिए, यहां पर कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ेंगे. आपके मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुँच रहे हैं. एक बार फिर से आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाइए. अगर आपने अभी तक हमें याद नहीं किया है तो ज़रूर आप बताइए कि आप किसको याद कर रहे हैं आफ्टर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल गाने ऑन 5499 1294.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
4: रेडियो मस्ती.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेलहोस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे

ऑलरेडी 7:58 एंड चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रही है इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज. साथ देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया. एंड ये ना सोचे कि आपके मैसेजेस हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं. एंड थैंक यू दिल से जो लोग वक्त निकाल कर हमें याद कर रहे हैं. एंड दिल से आपको शुक्रिया. एंड टू ऑल दोज जो अभी तक आपने हमें मैसेजेस नहीं भेजे हैं, अगर आपका भी मन हो रहा है तो बिल्कुल आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप अपनों के नाम भेजे प्यारा सा पैगाम. यही तो मौका होता है उनको थोड़ा सा स्माइल कराने का, उनको थोड़ा सा अच्छा फील कराने का. सो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे. सो चलिए थोड़ी देर में विल बी स्टेपिंग इन द नेक्स्ट आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज. तब तक के लिए इस कूल म्यूजिक को एंजॉय करिए.

ट्रस्ट मी, पहली बार के लिए कभी दिल बेचैन नहीं होता है, बल्कि जब भी प्यार होता है ना, तो इस बेचैनी को पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि दिल बेचैन हो रहा है, बल्कि जब आपको सच में प्यार होता है तो यू स्टार्ट गेटिंग लेस बटरफ्लाइज एंड यू स्टार्ट फीलिंग मोर सिक्योर इन लव. और ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू रियलाइज. एंड ये बात अगर आप जान पाए, पहचान पाए और परख पाए, तो इसका मतलब ये है आप सही इंसान के साथ हैं. व्हेन यू विल स्टार्ट गेटिंग लेस बटरफ्लाइज, क्योंकि प्यार में तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, बट व्हेन यू फॉल फॉर द राइट पर्सन, ऐसा लगेगा कि यू आर ऑलरेडी होम. और जब कोई इंसान आपका घर बन जाता है ना, तो इट्स द मोस्ट सिक्योर प्लेस एवर इन द होल वर्ल्ड. इसलिए आप के दिल में हलचल और बेचैनी होने के बजाय यू स्टार्ट फीलिंग एट पीस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, आपके साथ तो हमेशा हम ऐसे ही सुकून भरे पल बिताने के लिए एकदम तैयार होते हैं. टिल 9 PM हमारा और आपका साथ है इन योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या साथ रही है. दिल से आपको शुक्रिया एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए. चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेज की ओर. किसी ने हमें याद किया है, हाय दिव्या, आई मिस हिम बैडली. आपका नाम क्या है और आप किसको मिस कर रही हैं, ये तो ज़रूर बताइएगा. क्या पता वो अभी RM2 सुन रहे होंगे और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने उनके लिए मैसेज भेजा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपना नाम लिखें और उनका नाम भी. चलिए, यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे. टीना फ्रॉम शामुनी कहती है, प्ले अ रोमांटिक सॉन्ग टू शिवम, तेजस्वरी, विमला, बबीता, उर्वशी, रीटा, सरिता, वशनतो एंड सभी स्टाफ जहाँ पे आप काम करते हैं. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर एज यूजुअल वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर रानी श्वेता हुकुम अबोना को. आई वॉन्ट टू टेल हबी रोशन, लव हिम सो मच. एंड चलिए, ऐसे ही आपका प्यार हमेशा सलामत रहे. एंड एक्चुअली ये मैसेज हबी रोशन ने भेजा है, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू टेल हर दैट यू लव हर सो मच. तो चलिए, कभी रोशन जी मैसेजेस भेजते हैं, कभी रानी मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मैसेज भेजते तो ज़रूर हैं, और इसी से प्यार बढ़ता है. थैंक यू सो मच रोज़ रोज़ आपके मैसेजेस के लिए. एंड यहाँ पर आप कहती हैं, हेलो दी, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हबी रवि, ड्राइविंग राइट नाउ. और आप उनसे बस यही कहना चाहते हैं, दैट आई लव हिम अ लॉट एंड दैट ही मीन्स द वर्ल्ड टू मी, प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, फ्रॉम द फिल्म तुम बिन, स्पेशली फॉर हिम, फ्रॉम करिश. करिश, थैंक यू सो मच, आपने दिल का इजहार इकरार किया है. एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वक्त अगर रवि ड्राइव करते करते RM2 सुन रहे हैं तो हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे. एंड आई जस्ट होप एंड आई एम वेरी श्योर दैट ही कांट वेट टू बी बैक होम. तो चलिए, यहाँ पर अगला गाना स्पेशली आपके नाम भी. हाय दिव्या जी, आप कैसी हैं? बहुत ही ठीक ठाक, थैंक यू सो मच. हमेशा की तरह आप अपनी बहन शोभा भी से सर के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं अगला गाना. थोड़ी सी बीमार है, अभी अस्पताल में है, और आई जस्ट होप कि इस वक्त अस्पताल से हमें सुन पा रही हैं. और आपको बहुत सारा प्यार एंड विश योर बहन शोभा भी सर क्विक रिकवरी, और बहुत ही जल्द ठीक हो जाए और आपके साथ भी हो.

0: तो आपकी बहन के लिए अगला गाना. और रानीता जी आप हैं फ्लिक ऑफ लक से एज यूजुअल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट एंड आपके स्वीट स्वीट मैसेजेस जब भी आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है. वेल चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: चलिए, वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना आतिफ असलम की आवाज़ में, धीरे धीरे से तेरा हुआ, एंड धीरे से ही प्यार और भी बढ़ता जाता है, इसलिए यू डोंट नीड टू रश इन लाइफ. सब कुछ तेज़ रफ्तार से नहीं होता है, कभी कभी स्लो डाउन करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ जाती है. एंड जब आप स्लो डाउन करते हैं तो बहुत कुछ आप लोग एहसास करने लग जाते हैं, रियलाइज़ करने लग जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग इन इट सेल्फ. 8:28 हो चुके हैं. टू ऑल दोस जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल से आपको शुक्रिया. एंड चलिए, वनीशा का मैसेज आया है, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए वनीशा. एंड आप कहती हैं कि ईच टाइम आई लिसन टू यू, यू मेक मी बिलीव दैट ट्रू लव डू एग्जिस्ट. ये यस, एग्जिस्ट भी करता है, बस अगर नीयत सही है और दिल साफ है ना, तो यू डोंट नीड टू फाइंड लव, लव विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, लव विल रीच यू. एंड जब सच्चा प्यार आपके आपको दस्तक देंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको सच में यकीन नहीं आएगा. सो वनीशा, कीप ऑन बिलीविंग इन द मैजिक ऑफ लव एंड इन द मैजिक ऑफ म्यूजिक.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: मेबी इस वक्त बहुत सारे लोग ड्राइव कर रहे होंगे गोइंग बैक होम या फिर शायद आपका काम अभी ख़त्म हो चुका है और थके हारे आपको ड्राइव भी करके घर वापस जाना है बट डोंट टेक इट एज अ स्ट्रेस आप अपने इस ड्राइव को एंजॉय कीजिएगा एंजॉय योर ओन कंपनी एंड साथ में हमारे इस म्यूज़िक को भी एंजॉय करते रहिएगा ठंडी ठंडी हवाओं को चेहरे पर आने दें एंड जस्ट फील द वाइब जस्ट फील द लव

0: Such a beautiful and a sweet गाना, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एंड ऐसे ही हम अपनी कहानी लिखते चले जाएंगे. और वैसे कहते हैं ना कि किस्मत से पहले और वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा, इसलिए ऑलवेज ऑलवेज लाइफ में आपको परफेक्ट टाइमिंग का भरोसा करना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्कुराना बंद कर दें या फिर हम अपने आप को डाउट करना शुरू कर दें. जस्ट ट्रस्ट द परफेक्ट टाइमिंग एंड जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो, एंड स्पेशली स्पेशली गीतों का पूरा पूरा फायदा उठाते जाइए.
1: Evening Lounge. Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.
0: आपकी मुलाकात कल ऑन फ्राइडे सेम टाइम 7 से लेकर रात्रि

कि 9 बजे के बीच. एंड चलिए यहाँ पर जाते जाते अगला गाना हम खास तौर से दरिकेज करेंगे आपके लिए. आपने कहा हाय रेडियो मस्ती टीम, प्लीज़ प्ले अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय लवली हस्बैंड करण. और आपके 3 बेटे हैं आरव, अविशय, युवान, और आप हैं शिक्षणा फ्रॉम मोताबा. थैंक यू सो मच. और आप समोसे बनाते बनाते हमारे गीतों को सुन रही हैं एंड आप पसंद भी कर रहे हैं हर एक गीत को. थैंक यू सो मच शिक्षणा, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि आपको हर एक गाना बहुत ही पसंद आ रहा है. तो चलिए इसी के साथ हमारे जाने का टाइम आ चुका है. कल मुलाकात होगी सेम टाइम लेकिन एक अलग ही मूड के साथ, क्योंकि कल है फ्राइडे इवनिंग. सो थोड़ी पार्टी मूड में आएंगे और आपको भी एंटरटेन रखेंगे टिल 9 PM. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय बाय.

अपने लेट नाइट ग्रूव्स में दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रात के हम सफर जितने भी हमारे इस समय जुड़े हुए हमारे साथ, आपका स्वागत करती हूँ। काम से वापस जा रहे हैं घर या घर से निकल कर जा रहे हैं काम पर, बोन क्वास्ट टू यू, वेलकम टू लेट नाइट ग्रूव्स।

हेलो, मैं हूँ वेदिता, आपका साथ दे रही हूँ लेट नाइट ग्रुप्स में। तो बस हमारे गीतों का ये जो प्यारा सा सिलेक्शन है, उम्मीद करती हूँ आप जरूर पसंद कर रहे हैं। और क्या पता हमारे इस प्रोग्राम में आपको अपनी पसंद का कोई ऐसा गाना आ जाए जिसे सुनकर आपकी यादें एकदम जगमग।

You're listening to Late Night Grooves with me, Vedita. बाहर का मौसम जैसा भी हो, अंदर का मौसम जो है यहाँ पर एकदम रोमांटिक हो गया है. और इस रोमांटिक मौसम में हम आपके लिए कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो शायद आपके दिल में कहीं ना कहीं दिल के कोने में कुछ ना कुछ यादें आपके उभार दें, और ये यादें आपके होठों पे ले आए एक प्यारी सी.

दोस्तों हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि जिंदगी जो है बहुत जुल्म करती है हम पे। भाई जिंदगी तो बस सांस लेना होता है, हम जो करते हैं ना हमारे एक्शंस वो काउंट होता है। तो आज अगर हम किसी भी मुसीबत में हैं, आज अगर हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम सही से सोच नहीं रहे हैं, और इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं ये गड्ढे अपने लिए हमने खुद खोदे हैं। इसीलिए वर्क ऑन इट एंड जस्ट बी स्ट्रांग।

दोस्तों लाइफ में खुशियाँ ऐसी नहीं आती, खुशियाँ का क्या है ना कि वो हम क्रिएट करना पड़ता है। एक कप गरम गरम कॉफ़ी खिड़की के पास बैठे बैठे पी लिया, या तो फिर किसी गाने पे डांस कर लिया, किसी को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, या किसी ने आपको कोई मैसेज भेज दिया, बैठे बैठे आपको एक रेनबो दिख गया, कहीं से एक तितली आ गई, ये सारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। ये सारी खुशियों को ना अप्रिशिएट करना सीख जाओगे ना, तो बड़ी खुशियाँ बस अपने आप रास्ता ढूंढ कर आपके पास आ जाएगी।

खुशियों की बात कर रहे थे ना, कभी कभी आपकी पसंद का कोई गाना भी हमारे मूड को ठीक कर देता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? हमारे साथ तो रोज होता है, हमारे साथ तो हमेशा होता है। एक गाना सुना बस यादें ही यादें, क्योंकि हमारे साथ हमारे लिस्टर्स की यादें जो जुड़ी है।

हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत। किधर पहुंचे? घर को? ओके, तो घर से निकलते ही अभी मुझे नहीं पता आप कहां तक पहुंचने हैं, लेकिन आप अगर शीशे जो है ना उसको थोड़ा नीचे कर लें, ठंडी

ठंडी हवाओं को अंदर आने दे, थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाए, स्ट्रेस नहीं चाहिए हमें, रिलैक्स होके बैठ जाए और फिर उसके बाद रेडियो पे, हमारे रेडियो मस्ती पे ये गाना चले, तो आपका मूड कैसा होगा आई कैन इमेजिन। चलो रिलैक्स करते हैं अगले गाने के साथ।

तो जो लोग अपना आज जन्मदिन मना रहे हैं, let me wish you a very happy birthday. लोगों का बर्थडे खास होता है भाई, और ऐसे मौके पे लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाता. खैर, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि कोई आपको बर्थडे विश करे और उन्होंने नहीं किया, उनकी तरफ से मैं कर देती हूँ. हैं, चलो पूरी दुनिया की तरफ से मैं आपको विश करती हूँ. और ऐसे में दिल में जो है ना, कोई शिकवा गिला मत रखना, बस खुश रहना, गुनगुनाते रहना.

मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये बताइए मुझे कि अभी तक हमारे गीतों के साथ कुछ मूड बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला तो बदल देते हैं भाई, हमारा तो काम ही हमारे गीतों के साथ आपके लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना। तो उम्मीद करती हूँ अभी के हमारे जितने भी खूबसूरत गाने हैं इन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सी मेमोरी छोड़ी हुई है और आज इस गीतों को सुनकर आपने दोबारा उन लम्हों को जी लिया होगा। अभी गाने हमारे पास और है, सुनते रहिए।

सुनते रहिए रेडियो मस्ती पर लेट नाइट ग्रूव्स. मैं हूँ वेदिता. होप यू डूइंग गुड एंड यू डूइंग फाइन एंड यू आर लविंग द सिलेक्शन. कम ऑन गाइस, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारे गीतों से आपका मनोरंजन हो रहा है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.